सुनो सुनो, मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। कहानी? हाँ, मगर कौन सी कहानी सुनाऊं? हाँ हाँ, तुम्हारी कहानी, मेरी कहानी, प्रेम कहानी। ओ लड़की दीवानी, सुनो एक कहानी। जवां है नजारे, हंसी है सितारे। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8

करना के हाँ हाँ और सुनो हाँ एक परी थी। क्या? एक परी थी, तोता परी। हंसी वो बड़ी थी, हंसी वो बड़ी थी, गगन देश था उसका। क्या? गगन देश था उसका, अजब भेष था उसका। चले रात आगे, सुनो सुनो बात आगे, सुनो सुनो सुनो तो अरे अरे सुनो तो हाँ।

केतु, अरे अरे अरे ये तो फिर सो गई। अब क्या करूं, अब क्या करूं? कोई है, कोई है, कोई है? अरे हाँ, जाग गई तुम, हैं? जाग गई। और सुनो, और सुनाता हूँ। हाँ,

डर

सुनने वालों को अली रजा का सलाम पहुंचे। लीजिए सामीन, तैयार हो जाइए कि इस ऑडियो कैसेट नए रंग में आप सुनेंगे, महसूस करेंगे अपने पसंदीदा फनकार अताउल्ला खान ईसा खेलवी से खूबसूरत और दिलकश नगमे, और इनके संग संग हैं गुलकारा तबस्सुम वारसी। पहली बार इन हसीन आवाजों को यकजा किया मकबूल तरीन साउंड इंजीनियर सलीम कुरैशी ने, जिनकी तख्लीकी सलाहियतों को आवाज के दोष पर हम आप तक पहुंचा रहे हैं शालिमार रिकॉर्डिंग कंपनी और पीएमसी की जानिब से। तमाम उम्र चला हूं उदास राहों पर, तमाम उम्र चला हूं उदास राहों पर, मैं सोचता हूं कि अब तू भी मर न जाए कहीं।

पंजाब पीरां ने बख्शिया सानू सोना देश पंजाब, जिथे पौना आशक जमदियां ते डुलडुल पवे शबाब। कुंडियां मुछा फर्क दे डौले, चीतियां वर्गे लिश-लिश करदे शरीर, सबर सिद्दक ते मेहनत कश पंजाबी वीरां दी सिफत। अमन है ते निर्मल सिद्धू इंज करदे आ।

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: कफ्सेन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230 30 दास ब्रेडफोर्ड 7230 30।
2: क्या आप अपनी अंग्रेजी बेहतर करना चाहते हैं? क्या आप अपनी मैथ्स बेहतर करना चाहते हैं? शिपली कॉलेज आपकी मदद कर सकता है। शिपली कॉलेज मुफ्त में इंग्लिश मैथ्स ESOL कोर्सेज, चाहे आपको नौकरी हासिल करना है या आपको सिर्फ एतमाद महसूस करना है, हम आपकी मदद के लिए मौजूद हैं। बहुत से कोर्सेज अहलियत की शरायत पर होने पर मुफ्त हैं। मज़ीद मालूमात के लिए शिपली कॉलेज पर वेबसाइट जाएं।
3: Class, it's been reported that if we keep using water like we are now, by 2055 we could be short by 5 billion litres a day.
4: Hold on, miss. 2055? We'll be grown up by then.
5: We're not having that, are we?
4: No. Oi, hear that? It's water and cans.
6: And fix those drips and drops.
7: And take shorter showers, yeah?
8: Because when we work together,
9: it all adds up.
10: So come on, you lot. Search Let's Save Water.

0: उम्मीद ते पैरें ये जुतियां भी कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे कोल जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्का नतीला है सिर्फ 2 पौंड ना कन्स लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: Rishi's Vision presents Anand Murthy Guruma in London. Learn timeless yogic wisdom directly from the revered master. Join a 3-day series of enlightening talks on Yog Sutras for realizing the true self, 11th to 13th September 2026. Life-changing sessions featuring profound talks, practical insights and powerful meditations at Hariben Bachubhai Nagrecha Hall, 202 Leighton Road, London, E151DY. On Friday 11th and Saturday 12th September, 6 p.m. to 8 p.m. and Sunday 13th September, 3 p.m. to 5 p.m. Free event. All are welcome. For more details, call AK Basra 07977201226. Mirdosh Kumar 07899055525. Gurkirit 07886545970. Usha 07931788062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.
3: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane, where were you when you first heard this?
4: Now listen. Yeah. That's right.

0: नफ्सेन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 723030, दास ब्रेडफोर्ड 723030.
2: Want to speak better English? Want to improve your maths? Want to earn more money? Shipley College can help. Shipley College's free English, ESOL and maths courses. Whether you want to find work or simply feel more confident, we're here to help. Many courses are free, subject to eligibility. Go to the Shipley College website.
3: Rishi's Vision presents Anand Utsav with Anand Murthy Guruma in Birmingham. Discover practical tools to quieten the mind and experience lasting inner peace directly from the revered master. A three-day non-residential retreat to learn ancient techniques to move from stress to stillness. From 18th to 20th September 2026. Three enriching days power-packed with yoga, meditation, profound talks and much more. At Holiday Inn M6, Junction 7, Chapel Lane, Birmingham, B437BG. Registration required. Limited seats available. For more details, call Benny 07901-831-165, Raman 078-341-77866, Usha 0793-178-8062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Do you ever wish your family's diet could be that little bit better? Then why not try Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative? Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Better Ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking, so it's perfect for making all your favourite recipes. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrisons and quality local grocery stores.

0: कफ्सन ज़ायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230 30, दस ब्रेडफोर्ड 7230 30।
2: Free courses at Shipley College. Free teaching assistant courses. Free health and social care courses. Free childcare courses. Free business and digital skills courses. Want a good job? Want to earn more money? Want to make your family proud? You can learn for free at Shipley College, subject to eligibility. No qualifications. Didn't go to school in the UK? Go to the Shipley College website.
3: Class, it's been reported that if we keep using water like we are now, by 2055 we could be short by 5 billion litres a day.
4: Hold on, miss. 2055? We'll be grown-ups by then.
5: We're not having that, are we?
4: No. Oi, hear that? It's water and cans.
6: And fix those drips and drops.
7: And take shorter showers, yeah?
8: Because when we work together, it all adds up.
9: So come on, you lot. Search Let's Save Water.

0: कफ्सन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230 30 दास ब्रेडफोर्ड 7230 30।
2: Did you know radio advertising generates an average revenue return of £7.70 for every pound spent? It builds awareness, drives online searches, and keeps your business in customers' minds through regular, trusted exposure. Put the power of radio behind your business with Sunrise Radio, broadcasting across Yorkshire, Manchester, East Lancashire, and Milton Keynes, with even more areas coming soon. And as we prepare to expand our coverage further, ask about our limited special advertising offer. Call 0127 473 5043.

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Have you tried Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative? Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Caratino Better Ghee tastes just

0: माँ के दोष पर उड़ते परिंदों के परों की ओट में और दुनिया के गोशे गोशे में सुनी जाने वाली आवाज ये आपके अपने सनराइज रेडियो की है जो के 103.2 एफएम स्टेडियो पर और www.sunriseradio.fm पर पूरी दुनिया के कोने कोने में सुनाई देता है और आप 100.6 एफएम पे भी सुन सकते हैं। अगर डीएबी पे सुनना चाहें तो आप ब्रेडफोर्ड कीतले इल्कली स्किप्टन लीड्स हैलिफैक्स मैनचेस्टर ईस्ट लंकाशायर ब्लैकबर्न बर्नले डार्विन नेल्सन अकरिंगटन एंड मिल्टन कीन्स में सुन सकते हैं और बहुत ज़्यादा आप लंदन में भी सुन पाएंगे 2nd of September को। तो अगर आप एप्पल स्टोर या फिर गूगल प्ले स्टोर पर सुनना चाहें तो भी सुन सकते हैं। तो आमिर शहजाद की तरफ से अस्सलामु अलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। हम उम्मीद रखते हैं जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँची होगी आप सबको खैरियत के साथ पाया होगा। अगर खुदा न खास्ता आप बीमार हैं तो हम दुआ करते हैं अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। साथ में ये भी उम्मीद रखते हैं आपकी सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा। दुआ करते हैं आपका दिन भी अच्छा गुजरे। सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहेंगे एबी का जिन्होंने पिछले 2 घंटों से आपके लिए बहुत ही प्यारा सा प्रोग्राम पेश किया। एबी बहुत शुक्रिया आपका। तो दोस्तों मेरा और आपका साथ रहेगा ठीक 2 बजे तक, अब से लेकर 1 बजे तक आपकी डेडिकेशन है। 1 और 2 के दरमियान आप लाइव कॉल्स में आए और अगर आप अपनी पसंद की शायरी या फिर अपनी पसंद का कोई गीत गुनगुनाना चाहें तो ज़रूर आइएगा। आपके लिए 1 और 2 के दरमियान लाइव कॉल्स खुली होंगी। तो चलते हैं दोस्तों प्रोग्राम को शुरू करते हैं हिट ऑफ द आवर के साथ, एक प्यारी सी कवाली के साथ सभी सुनने वालों के नाम।
1: The hit of the hour is brought to you by Sophie Jewelers, with a wide range of designs of all kinds of jewelry. Sophie Jewelers, 119-21-21, Oak Lane, Bradford 9. Call 0-1274-056-014.

0: अदनान शमी की आवाज में दोस्तों आपने हिट ऑफ द आवर सुना. इसके साथ ही चलते हैं टाइम चेक कर लेते हैं.
1: सनराइज रेडियो योर साउंडट्रैक योर टाइम चेक.
0: हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही है 11:16 यानी कि 16:11. तो कमर्शियल का टाइम हो गया है जनाब. कमर्शियल के बाद एक प्यारा सा गीत होगा मेरी जानिब से तमाम सुनने वालों के नाम. तो चलते हैं जनाब अब कमर्शियल की जाने. कमर्शियल के बाद दोस्तों आपसे मिलते हैं. कमर्शियल के बाद गीत होगा उसके बाद मिलते हैं.

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Want your business to reach more customers and stay front of mind? Advertising with Sunrise Radio. Connect your brand with a loyal, engaged audience across Yorkshire and our growing DAB network. Radio builds trust, increases awareness, and gives your business repeated exposure throughout the day. And right now, as Sunrise prepares to expand even further, we're offering a limited-time special advertising package. Promote your business today with Sunrise Radio. Call 012-74-735-043.

दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना तारिक जुल्फी साहब, शुक्रिया फोन करने का जनाब। आपने फोन किया और आपने कहा कि आप अपने दोस्तों के लिए जिनमें है हीरा खान साहब और स्पेशली जनाब मलिक इश्तियाक साहब, इश्फाक साहब, उनके लिए गीत सुनना चाहते हैं, तो जनाब हीरा खान और मलिक इश्फाक के लिए और गुलाम भाई आपकी जन्म से आपके स्टाफ के लिए और सभी दोस्तों के लिए

जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, और गीत जब हमने प्ले किया था तो जनाब तारिक जुल्फी साहब आपकी जानिब से आपके दोस्तों के नाम किया था, हीरा खान साहब के नाम, और जो मलिक इसहाक साहब हैं उनका माल चाहते हैं, पहले तो इसहाक ही कहा था, उसके बाद शफाक निकल गया मुंह से, माल चाहते हैं मलिक इसहाक साहब आपके नाम था स्पेशली, और आने वाला गीत भी तारिक जुल्फी साहब आपकी जानिब से हीरा खान साहब के लिए और आपके दोस्त मलिक इसहाक साहब के लिए होगा, और इस गीत की फरमाइश की हमें नदीम मंसूर साहब आपने, तो आपकी पसंद का गीत जनाब आपके नाम करते हैं, शुक्रिया

0: years of experience.
1: Nearmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nearmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
2: Do you ever wish your family's diet could be that little bit better? Then why not try Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative. Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Better ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking, so it's perfect for making all your favourite recipes. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrison's and quality local grocery stores.
3: कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नरम छाओं में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये रंजो गम की स्याही जो दिल पे छाई है तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी, मगर ये हो ना सका। मगर ये हो ना सका और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरजू भी नहीं। न कोई राह, न मंजिल, न रोशनी का सुराग, भटक रही है अंधेरों में जिंदगी मेरी। इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा कभी खोकर। मैं जानता हूं मेरी हम नफस, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता।

जी दोस्तों, अभी आपने मुकेश की आवाज में गाना सुना और डायलॉग अमिताभ बच्चन की आवाज में सुने, और ये हमें नदीम मंसूर साहब ने इस गीत की फरमाइश की थी, तो उनके नाम भी किया था, सभी सुनने वालों के नाम किया था। तो चलते हैं दोस्तों, अब एक प्यारा सा गीत मेरी जन्म से तमाम सुनने वालों के नाम।

0: जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, यकीनन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। और इसके साथ ही चलते हैं, टाइम चेक करते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं 11:45, यानी कि 11:45। तो इसका मतलब ये हुआ कि कमर्शियल का टाइम हो गया है जनाब, और कमर्शियल के बाद एक सदाबहार पुराना गीत होगा। हीरा खान साहब, शुक्रिया, आपने 2-3 बार फ़ोन किया, आपकी कॉल नहीं ले पाया हूँ। आपके नाम करेंगे, तारिक जुल्फी साहब आपके नाम करेंगे, हमारे प्यारे दोस्त जनाब चौधरी मनीर साहब चक्की वाले भी फ़ोन कर रहे हैं, उनके नाम भी करेंगे, और चौधरी मुजफ्फर साहब के नाम करेंगे, और उसके बाद नदीम मंसूर साहब, अब्दुल क्यूम साहब राइजिंग हॉल वाले, और जनाब महबूब अलाई साहब आपके नाम, और सफ़ीउल्ला भाई, तो आबिद भाई आप सभी दोस्तों के नाम, और मलिक इम्तियाज़ साहब आपकी पूरी टीम के नाम। तो चलते हैं, सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद गीत, गीत के बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है।
2: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
3: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
2: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
3: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923788.
4: Official media partner, Sunrise Radio.
5: Rishi's Vision presents Anand Murthy Guruma in London. Learn timeless yogic wisdom directly from the revered master. Join a 3-day series of enlightening talks on Yoga Sutras for realizing the true self, 11th to 13th September 2026. Life-changing sessions featuring profound talks, practical insights and powerful meditations at Hariben Bachubhai Nagrecha Hall, 202, Leighton Road, London, E151DY. On Friday 11th and Saturday 12th September, 6 p.m. to 8 p.m. and Sunday 13th September, 3 p.m. to 5 p.m. Free event. All are welcome. For more details, call AK Basra 07977201226. Mirdosh Kumar 07899055525. Gurkirit 07886545970. Usha 07931788062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.

दोस्तों अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, यकीनन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा किशोर कुमार की प्यारी सुरीली आवाज में। अब चलते हैं एक और प्यारा सा गीत आप प्यारे दोस्तों के लिए पेश करता हूं। आप जहां कहीं भी हैं, दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं, आप सनराइज रेडियो को सुन रहे हैं, तो आपके नाम गीत करेंगे दो प्यार भरी आवाजों में। तो चलते हैं दोस्तों, इंजॉय करते हैं इस गीत को और उसके बाद दोस्तों आपसे मिलते हैं। इस आवर का ये आखिरी गीत होगा जनाब, तो इंजॉय कीजिएगा इसको।

0: जी दोस्तों साथियों, ये आपका अपना सनराइज रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातब है और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आ गए हैं दोस्तों। और याद रखिए, यही आवर है डेडिकेशन का, क्योंकि प्रोग्राम का जो आखिरी आवर होगा एक और दो के दरमियान, वो लाइव कॉल्स का होगा, जिसमें आप अपनी पसंद की शायरी सबके साथ शेयर कर सकते हैं या फिर अपनी आवाज़ में कोई गीत गुनगुना सकते हैं। तो ये फॉर्मेट होगा जनाब, और उसके बाद अब जनाब चलेंगे हिट ऑफ द आवर की जानिब। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से को शुरू करते हैं हिट ऑफ द आवर के साथ। कोशिश होगी इस आवर में अच्छे और प्यारे गीत आप दोस्तों के लिए पेश करूं। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं हिट ऑफ द आवर, उसके बाद दोस्तों आपसे मिलते हैं। सुनते रहिएगा, संग संग रहिएगा अपने मनपसंद सनराइज रेडियो के संग।
1: The hit of the hour brought to you by Hope Yorkshire. Telephone 0800 015 7866.

0: दोस्तों अभी आपने बहुत ही प्यारा सा हिट ऑफ द आवर सुना, यकीनन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। इसके साथ ही चलते हैं, टाइम चेक करते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं 12:14, यानी कि 14 minutes past 12, और इसके साथ ही कमर्शियल का टाइम हो गया है जनाब। कमर्शियल के बाद आप सुनेंगे एक प्यारा सा गीत आप सभी दोस्तों के लिए जो इस वक्त सनराइज रेडियो की नशरियात को सुन रहे हैं। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं कमर्शियल। कमर्शियल के बाद गीत होगा। मलिक इम्तियाज साहब, आपकी पूरी टीम, इकमाज, मुनीर, वसीम, इमरान, मुजाहिद, अल्लाह देता, मेहर, बाबर, इफराज, और उसके बाद इसी गीत को नज़र करना चाहेंगे। इकरा जी, आप सुनना चाहती हैं नजमा, इफ़त, नाजिया, उमीदा, रुबीना, बुशरा, ताज़ीम, जायदा और साइमा के लिए, और हाजरा बहन आपके नाम भी और दीगर तमाम दोस्तों के नाम भी करेंगे। तो चलते हैं, सुनते हैं कमर्शियल। कमर्शियल के बाद गीत, गीत के बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है।
2: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
3: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
2: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
3: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 Oak Lane, Bradford 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
4: क्या आप अपने कारोबार को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो के साथ तशहीर आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सारिफिन का एतमाद कायम करती है और आपके कारोबार को मुसलसल याद रखवाती है। यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लिंकशायर और मिल्टन केन्स में नशरियात और मजीद इलाकों में बहुत जल्द। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी ऑफर के लिए आज ही कॉल करें 012-747-35043।

बहुत ही प्यारा सा गीत प्यारे दोस्तों के लिए पेश किया और वाजिद भाई अड्डस्वीर से फ़ोन किया, शुक्रिया आपका। कमर्शियल से पहले जो गाना अब आ रहा है, नेक्स्ट जो आ रहा है वो आपके लिए है। और ग़ुलाम भाई बहुत शुक्रिया फ़ोन करने का जनाब, बहुत अच्छा लगा अपने भाई से बात करके। और जनाब आने वाला गीत भी आपकी जानिब से आपके पूरे स्टाफ के नाम, नवीद भाई आपके नाम भी, और उसके बाद नुतान बहना साहबा, आप पुराने गीत पसंद करती हैं, जब पुराने गीत की बारी आई तो आपके नाम ज़रूर गीत करूंगा। फिलहाल आने वाले गीत से दिल बहलाइएगा। और उसके बाद जनाब चौधरी मुनीर साहब चक्की वाले और दीगर जो दोस्त इस वक्त सन रेडियो की निशात को सुन रहे हैं, सबके नाम करते हैं इस गीत को। तो चलते हैं सुनते हैं इस प्यारे से गीत को, कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में ये प्यारा सा गीत।

जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, यकीनन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। और जनाब जरीना साहबा, फ़ोन करने का शुक्रिया। आपके नाम करेंगे नसरीन साहबा, बहुत शुक्रिया आपने फ़ोन किया। आप अपनी बिटिया आसमा के लिए गीत सुनना चाहती हैं, उनके नाम करेंगे। और हमारी प्यारी बहना जीत कौर, आपने भी फ़ोन किया, शुक्रिया फ़ोन करने का। और आपके नाम भी गीत करते हैं, तो चलते हैं सुनते हैं। और सभी सुनने वालों के नाम करेंगे, और स्पेशली सिकंदर अली, आपने फ़ोन किया। आप इस वक्त बाबर शाह पे तीनों शहजादे काम कर रहे हैं, बिशारत अली, सिकंदर अली, आरफ अली, और आपके नाम करेंगे। और दीगर जो दोस्त वहाँ बैठे हुए हैं उनके नाम भी गीत को करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं कमर्शल के बाद एक प्यारा सा गीत होगा आप सभी सुनने वालों के नाम। और इकरा जी, आपकी जानब से नजमा, इफ़त, नाजिया, मीदा, रुबीना, बुशरा, ताजीम, जायदा और साइमा के नाम भी होगा, और दीगर तमाम सुनने वालों के नाम होगा। आजरा बहन, आपके नाम भी। तो चलते हैं सुनते हैं कमर्शल के बाद गीत, गीत के बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है।

है नींद किसे अब है चैन कहां हल्का यकनिक और कुमार सानू की आवाजों में दोस्तों आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना और अब चलते हैं मेरी जानिब से तमाम सुनने वालों के नाम ये प्यारा सा गीत

0: जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, यकीनन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। अब इसके साथ ही चलते हैं, टाइम चेक करते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं 12:46, यानी कि 12:46। तो चलते हैं जनाब कमर्शियल की जानिब। कमर्शियल के बाद एक प्यारा सा गीत होगा आप प्यारे दोस्तों के लिए, और जीत कौर बहना थोड़ी देर के बाद आपके लिए एक और कोई गीत प्ले करूंगा। फिलहाल जो है वो आने वाला गीत रफ़ी साहब की आवाज़ में है, तो वो आपके नाम करेंगे, और अपनी नौतान बहना आपके नाम भी करेंगे। ग़ुलाम भाई आपके नाम, आपकी जानब से स्टाफ के, स्टाफ के नाम चौधरी मुनीर साहब, चक्की वाले हीरा खान साहब, नदीम मंसूर साहब, अब्दुल क्यूम साहब, फ्राइजी मौलो वाले तारिक जुल्फी साहब, और इस वक्त बाबर शापे तीन शहजादे काम कर रहे हैं, बिशारत अली, सिकंदर अली, आरफ अली, उनके नाम भी, और दीगर जो दोस्त वहाँ बैठे हुए हैं उनके नाम भी करेंगे। तो चलते हैं, सुनते हैं कमर्शियल। कमर्शियल के बाद और सफ़ीउल्लाह भाई आपके नाम भी करते हैं जनाब, नवीद भाई आपके नाम भी करते हैं, और मलिक इम्तियाज़ साहब आपकी पूरी टीम के नाम करते हैं। तो चलते हैं, सुनते हैं अब कमर्शियल। कमर्शियल के बाद गीत, गीत के बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है।

दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना और इस वक्त बाबर शॉप पे दो प्यारे से दोस्त बैठे हुए हैं, शारत अली, सिकंदर अली, आरिफ अली, आपके साथ साथ जनाब बैठे हुए हैं राजा रोहित साहब और चौधरी आसम साहब, उनके नाम भी करेंगे और दीगर दोस्तों के नाम भी करेंगे, सभी सुनने वालों के नाम करेंगे। इस आवर का आखिरी गीत जनाब,

0: जी दोस्तों साथियों, ये आपका अपना सनराइज रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातिब है। और दोस्तों प्रोग्राम के तीसरे और आखिरी आवर में आ गए हैं और याद रखिए इस आवर में कोई गीत नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ लाइव कॉल दूंगी जिसमें आप अपनी पसंद की शायरी या फिर अपनी पसंद का कोई गीत गुनगुना सकेंगे। कोई डेडिकेशन नहीं होगी, कोई रिक्वेस्ट नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ लाइव कॉल्स। तो चलते हैं जनाब प्रोग्राम के तीसरे और आखिरी हिस्से को शुरू करते हैं हिट ऑफ द आवर के साथ। और हिट ऑफ द आवर का गीत आप तमाम दोस्तों के नाम जो इस वक्त सनराइज रेडियो की निशरात को सुन रहे हैं।
1: Hit of the Hour, brought to you in association with Bellevue Residences. Discover stunning 4, 6 and even 8 bedroom homes. Call 0127 428 8252.
2: Sunrise Radio. Hit after hit. The hits of today and the hits of tomorrow. Sunrise Radio. Hit of the Hour.

0: जी दोस्तों, अभी आपने हिट ऑफ द आवर सुना, इसके साथ ही चलते हैं टाइम चेक करते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं कि जनाब 1:10 यानी कि 10:01, और जैसा कि आपको पता है कि लाइव कॉल्स का सिलसिला है, और लाइव कॉल्स में आप अपनी पसंद की शायरी या फिर अपनी पसंद का कोई गीत गुनगुना सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ जुड़े हुए हैं नदीम मंसूर साहब, तो चलेंगे तालियों की गूंज में नदीम मंसूर साहब को सुनेंगे और देखते हैं आज वो हम लोगों के लिए क्या लेकर आए हैं। तो तालियों की गूंज में खुश आमदीद, वेलकम जीएनयू, सत बिस्मिल्लाह कहेंगे, अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नदीम मंसूर साहब, कैसे हैं जनाब?
2: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कैसे हैं?
0: दुआ चाहिए भाइयों की, अल्लाह का करम है, आप काम पे हैं और फिर भी हम दोस्तों के लिए टाइम निकालते हैं, बहुत शुक्रिया आपका। और क्या लेकर आए हैं जनाब?
2: अच्छा, हल्का हल्का सा से बादल छाए हुए हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना बदलां विचों कान लंघ दे।
0: अच्छा, कोई माया सुनाने का इरादा है?
2: माया, हाँ, मेरा मूड इस पे आ गया था।
0: वाह जी वाह, क्या बात है, क्या बात है।
2: तो मैंने कहा ये आपकी नजर।
0: जरूर जरूर जरूर सर।
2: बदलां विचों कान लंघ दे, ओ बदलां विचों कान लंघ दे, पैवन जुदाइयां चना, ओ पत्ते सजना दे तां लग दे, पैवन जुदाइयां चना, ओ पत्ते सजना दे तां लग दे, कोई कलम से आई वाला हो, कोई कलम से आई वाला हो, कोई कलम से आई वाला हो, कोई कलम से आई वाला, के तुदा दसा मैं चना, हाल अपनी जुदाई वाला, के तुदा दसा मैं चना, हाल अपनी जुदाई वाला, कोई

चारों सी हो उस वेले माई मिलसी ओ जदों

ओ जदों कफन तैयारो सी शीशा वेख के बंद कीता ओ शीशा वेख के बंद कीता ओ शीशा वेख के बंद कीता ओ शीशा वेख के बंद कीता तेरिया मोहब्बतां ने ओ सानू डाडा तंग कीता तेरिया मोहब्बतां ने ओ सानू डाडा तंग कीता काठी टुट गई।

थी वो काठी टूट गई है कोड़े दी, वो काठी टूट गई है कोड़े दी।

0: वाह क्या बात है नदीम मंसूर भाई, क्या बात है, क्या बात है, ढेर सारी तालियां। वो यार मुझे वो बोल नहीं भूल रहा, वो जो वो आपने बोला था वो कोई आमदा अचार उसी
1: हाय हाय
0: हाय हाय हाय मैं यादू मिलसी जदू मेरा कफन तैयार होसी
1: हाय हाय,
0: क्या बात क्या बात क्या बात है, वाह जी वाह, बहुत खूब बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर, अल्लाह आपको लंबी उम्र दे, सेहत वाली दे और किसी का मोहताज ना करे, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज। ये थे नदीम मंसूर साहब, ढेर सारी तालियां के लिए जनाब, और क्या माया इन्होंने गाया, क्या माया गाया। और दोस्तों इसके साथ ही वक्त हुआ चाहता है कमर्शियल का, तो चलते हैं सुनते हैं कमर्शियल, उसके बाद मिलते हैं।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Did you know radio advertising generates an average revenue return of £7.70 for every pound spent? It builds awareness, drives online searches, and keeps your business in customers' minds through regular, trusted exposure. Put the power of radio behind your business with Sunrise Radio, broadcasting across Yorkshire, Manchester, East Lancashire, and Milton Keynes, with even more areas coming soon. And as we prepare to expand our coverage further, ask about our limited special advertising offer. Call 0127 473 5043.
3: My favourite radio station, Sunrise Radio.
4: I always listen to Sunrise Radio, and now I can listen on the move.

0: जी दोस्तों साथियों, अभी आप बहुत ही प्यारा सा गीत सुन रहे थे और हमारे साथ जुड़ गई हैं जनाब गजाला जबीन बहना और रोचनल से, तो उन्हें सुनेंगे तालियों की गूंज में। खुश आमदीद, वेलकम जी एनु, सत बिस्मिल्लाह कहेंगे गजाला जबीन बहना को। गजाला जबीन बहना, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।
1: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। क्या हाल है मेरे भाई का?
0: अल्हम्दुलिल्लाह, बहनों की दुआ से अल्लाह का बहुत करम है। आप सुनाएं, आप कैसी हैं?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ और आप लोगों की दुआएं मेरे भी साथ हैं।
0: ठीक है, आज क्या बात है? आज बहन मेरी कोई थोड़ी थोड़ी धीमे धीमे बोल रही है।
1: बस वो थोड़ा थोड़ा कभी हो जाता है ना, जरा मैं कल पैदल चली हूँ तो तबीयत कोई थोड़ी सी थकी थकी सी।
0: कल पैदल चली थी?
1: मेरे वो बच्ची के बच्ची भी आई हुई थी आगे, तो वो टाउन शाउन और इधर उधर जाना हुआ ना,
0: हाय हाय,
1: थोड़ी वो हो जाती है ना, क्या करें। अब बच्चों का भी दिल रखना पड़ता है।
0: वो तो है, लेकिन उन्हें कहे ना मैं इतना चल नहीं सकती।
1: उन्हें पता है, लेकिन वो बस बड़े कोशिश करते हैं, पर क्या करें, थोड़ा बहुत कभी कभी हो ही जाता
0: है। हाँ, हो जाता है कभी कभी, चलियो। हाँ, वैसे रोज थोड़ा थोड़ा चला करें ना तो फिर
1: बच्चियाँ उसकी खुश हो गई
0: है भाई।
1: यही बात है। और आप सुनाए?
0: मैं तो ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बहन की दुआ से अल्लाह का बहुत करम है, बहुत करम।
1: मेरी तरफ से तमाम अहले समाज को अस्सलाम वालेकुम। अभी मेरा ख्याल नदीम साहब भी आए थे, और भी कोई आया है?
0: अभी नदीम मंसूर साहब आए थे।
1: आपका टाइम बड़ा कम होता है ना?
0: नहीं, टाइम नहीं, वो असल में वो अभी आप समझ जाए ना क्यों आज नहीं इतने बंदे ना।
1: हाँ, बस वो इसीलिए मैंने कहा चलो मैं भी छोटी छोटी हाथी।
0: मिलाद के दिन चल रहे हैं ना, तो इसलिए
1: चलो। रुखसार साहब आ गए हैं, उनको भी मेरा बहुत सलाम। के नहीं, अभी नहीं आए होंगे।
0: अच्छा अच्छा,
1: चले मैं ऑनलाइन पढ़ लूं?
0: बिल्कुल, आप आने रहे।
1: अच्छा अच्छा,
0: बहन भाई बात कर रहे हो तो छुपा के क्यों बात करें?
1: नहीं नहीं, मैंने कहा शायद वो अभी होल्ड पे होता है ना बंदा।
0: नहीं नहीं, होल्ड पे तो वो नहीं, बातें कर रहा हूँ आपसे।
1: आपके होल्ड का भी नहीं पता चलता।
0: हाँ वो तो है।
1: चले मैं एक पढ़ती हूँ, बिखरे अल्फाज।
0: अच्छा,
1: गजल का अनुमान है
0: बिखरे अल्फाज।
1: यस, आँख से जू ही कोई ख्वाब पुराना निकले। आँख से जू ही कोई ख्वाब पुराना निकले, दिल के गोशे से नया एक अफसाना निकले।
0: वाह क्या बात है।
1: दिल के गोशे से एक नया अफसाना निकले।
0: बहुत खूब।
1: हमने चाहा था कि खामोश रहें महफिल में।
0: वाह।
1: हमने चाहा था खामोश रहें महफिल में, बात छेड़िए तो जबान से वही गाना निकले।
0: वाह बहुत खूब।
1: बात छेड़े तो वही जबान से गाना निकले। तेरी गलियों की हवाओं में अजब जादू है।
0: वाह क्या कहने।
1: तेरी गलियों की हवाओं में अजब जादू है, जो भी गुजरे तेरे दर का दीवाना निकले।
0: वाह बहुत खूब।
1: जो भी गुजरे तेरे दर का दीवाना निकले। हमने माना कि शबे गम है बहुत ही लंबी, शायद इस शब भी कोई भोला भूला जमाना निकले।
0: वाह बहुत खूब बहुत खूब।
1: हमने माना कि शबे गम है बहुत ही लंबी, शायद
0: बहुत
1: इस शब में कोई भूला जमाना निकले।
0: वाह क्या कहने।
1: रोज कहते हैं कि भूलेंगे, रोज कहते हैं कि भूलेंगे तुझे हम, लेकिन रोज दिल से यही हसरत का तराना निकले।
0: वाह वाह क्या बात है क्या बात।
1: रोज कहते हैं कि भूलेंगे तुझे हम, लेकिन लेकिन आज ना कोई इंटरनेट भी खराबी कर ले।
0: कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है।
1: वो ही ना हो, लेकिन रोज दिल से यही हसरत का तराना निकले, हम अनीस इसकी मोहब्बत भाग जाता है जल्दी।
0: कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आराम।
1: अनीस इसकी मोहब्बत में यूं गुमनाम हुए, जब कोई पूछे खबर इसकी बहाना निकले।
0: वाह वाह क्या बात है।
1: जब कोई पूछे खबर इसकी बहाना निकले, आंख से जू ही कोई ख्वाब पुराना निकले।
0: वाह।
1: दिल के गोशे से नया एक अफसाना निकले। हमने चाहा था कि खामोश रहे महफिल में, हमने चाहा था खामोश रहे महफिल में, बात छेड़े तो जबान से तराना निकले।
0: वाह वाह वाह क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब
1: भाई, बहुत शुक्रिया।
0: शुक्रिया बहना, मुझे क्यों शुक्रिया कहती हैं? शुक्रिया आपका, आपने टाइम निकाला और प्रोग्राम में शमूलियत की, इतनी प्यारी गजल हमें सुनाई और आप कह रही हैं कि शुक्रिया मेरा।
1: फिर भी चले, हम भी यहाँ पे रेडियो पे हाजिरी लगाते हैं और आप प्रेजेंटर हैं तो थैंक यू तो बोलना पड़ता है।
0: नहीं, आप लोगों की वजह से हमारे प्रोग्राम है ना, आप लोग ना प्रोग्रामों में शामिल हैं ना सुने, तो हमें कौन बैठाए इधर। हाँ हमें कौन बैठाए, आप बहनों की भाइयों की वजह से ही जनाब हमारी रोजी रोटी लगी हुई है, तो शुक्रिया आपका कि आपकी वजह से रोजी रोटी लगी हुई है। हम खाली बैठ के यहाँ मुफ्त में पैसे कमा रहे हैं, तो शुक्रिया आपका, आप सब की वजह से है। और अब तो माशाल्लाह जी, ठीक है वाजिद को सलाम जी जी,
1: ओके भाई,
0: ओके बहना,
1: लाला फरियाल को भी,
0: हाँ ठीक है, भाई लाला फरियाल पता नहीं किधर फंस गए,
1: वो भी कहीं हाजिरी लगाने के चक्कर में दौड़ लगाई
0: सही है,
1: कहीं ना कहीं उनकी उंगलियां चल रही होंगी मोबाइल पे।
0: हाँ वो तो है, बिजी रहते हैं, बिजी रहते हैं, आजकल प्रॉब्लम ये है कि वहाँ इंटरनेट नहीं है ना कश्मीर में, तो उस वजह से काफी लोग परेशानी में है ना।
1: हाँ यही बात है ना, बस अप्स एंड डाउन रहता है।
0: सही है, सही।
1: हम पाकिस्तान, अपने पाकिस्तान के लिए दुआ कर सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते।
0: सही है, सही सही है,
1: ये ना कहें कि हम पैसे भेज भेज के कर लेंगे, वो नहीं, लेकिन दुआओं से करेंगे हम पाकिस्तान अपने,
0: सही सही,
1: और वहाँ के लोगों को ईमानदार सही और सही मोहब्बत करने वाला बनाएंगे।
0: आमीन आमीन आमीन।
1: ओके
0: ओके बहना, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ये थी प्यारी सी बहना गजाला जबीन सबा रोशनी से, ढेर सारी तालियां उनके लिए, बड़ी प्यारी शख्सियत और माशाल्लाह मिलनसार शख्सियत और बड़े प्यार से और खलूस से मोहब्बत से ढेर सारी दुआओं के साथ प्रोग्राम में शमूलियत करती हैं और आती हैं और प्रोग्राम को रौनक बख्शती हैं, बहुत शुक्रिया इनका। और दोस्तों वक्त हुआ जाता है कमर्शल का, कमर्शल के बाद आपसे मिलते हैं।

जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारी सी कवाली सुनी, यकीनन आप दोस्तों ने एंजॉय की होगी ये कवाली। और अब जो है वक्त हमें बता रहा है कि जोहर की अजान का टाइम हो गया है, तो चलेंगे जनाब जोहर की अजान सुनेंगे, उसके बाद आप दोस्तों से मिलते हैं और प्रोग्राम को जारी रखते हैं। तो चलते हैं, सुनते हैं जोहर की अजान और उसके बाद दोस्तों आपसे मिलते हैं।

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: जी सामीन, अभी आपने जोहर की अजान सुनी और इसके साथ ही वक्त हमें बता रहा है कि कमर्शियल का टाइम भी हो गया है और कमर्शियल के बाद आप सुनेंगे एक सदाबहार पुराना गीत। लेकिन कमर्शियल पे जाने से पहले हम जो है वो टाइम चेक करते हैं और टाइम चेक के बाद ही प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, टाइम चेक करते हैं।
1: Sunrise Radio, your soundtrack, your time check.
0: जी दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं इस 43 मिनट पास्ट वन। तो कमर्शियल की जानिब चलेंगे। कमर्शियल के बाद सदाबहार पुराना गीत होगा और उसके बाद आप दोस्तों से मिलते हैं, सुनते रहिएगा। अगर कोई दोस्त आने रहना चाहे तो ज़रूर आ सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं कमर्शियल। कमर्शियल के बाद सुनेंगे आप सदाबहार पुराना गीत, उसके बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है। सुनते रहिएगा, संग संग रहिएगा अपने मनपसंद सनराइज रेडियो के संग।

ही पड़ा ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है।

जी दोस्तों, अभी आपने सदाबहार कवाली सुनी, सदाबहार आवाज जनाब रफी साहब की। और इसके साथ ही दोस्तों, अब वक्त हमें बता रहा है कि प्रोग्राम जो है वो इख्तिताम तक पहुंचाया है। तो अब क्या करेंगे, जो क्या कहते हैं उसको, आपसे इजाज़त लेंगे दोस्तों। उम्मीद रखते हैं कि आज का प्रोग्राम आप साथियों को पसंद आया होगा, और अगर अल्लाह ने चाहा और ज़िंदगी ने वफा की तो आपके साथ मेरी मुलाकात कल सुबह 11 बजे होगी। तो जनाब आमिर शहजाद को इजाज़त दीजिएगा, हमारी जानिब से खुदा हाफिज़, अल्लाह निगबान एंड गुड बाई।

अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड वेरी वेरी गुड डे। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आपका आज का दिन अभी तक खूबसूरती से गुजर रहा होगा। और मेरी दुआ है कि आप हमेशा सलामत रहें, खुश रहें, आबाद रहें और जहाँ भी रहें अपनों के साथ साथ रहें, आमीन। और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आप सबके दुख दर्द, बीमारियाँ, परेशानियाँ जो भी हैं उनको दूर फरमाए, बहुत जल्द आपको सेहतियाब, तंदरुस्ती और आपकी मुश्किलात को आसान कर दे, आमीन। मैं हूँ शहनाज मंसूर, आपके साथ रहूँगी अगले 3 घंटे। मुझे उम्मीद है कि आप मेरा साथ ज़रूर निभाएंगे। मोहब्बतों, चाहतों और दुआओं का सफ़र है, आपके साथ साथ हमें गुजारना है, आपके साथ साथ चलना है। बहुत बहुत शुक्रिया अगर आप भी हमारा साथ देंगे।

0: नफ्सेन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉन्गलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230 30, दास ब्रेडफोर्ड 7230 30।
2: क्या आप अपनी अंग्रेजी बेहतर करना चाहते हैं? क्या आप अपनी मैथ्स बेहतर करना चाहते हैं? शिपली कॉलेज आपकी मदद कर सकता है। शिपली कॉलेज मुफ्त में इंग्लिश मैथ्स ईसॉल कोर्सेज, चाहे आपको नौकरी हासिल करना है या आपको सिर्फ एतमाद महसूस करना है, हम आपकी मदद के लिए मौजूद हैं। बहुत से कोर्सेज अहलियत की शराइत पर होने पर मुफ्त हैं। मज़ीद मालूमात के लिए शिपली कॉलेज पर वेबसाइट जाएं।
3: ऋषि'स विजन प्रेजेंट्स आनंद उत्सव विद आनंद मूर्ति गुरुमा इन बर्मिंघम। Discover practical tools to quieten the mind and experience lasting inner peace directly from the revered master. A 3-day non-residential retreat to learn ancient techniques to move from stress to stillness. From 18th to 20th September 2026. 3 enriching days power-packed with yoga, meditation, profound talks and much more. At Holiday Inn M6 Junction 7 Chapel Lane, Birmingham B437BG. Registration required. Limited seats available. For more details, call Benny 07901-831-165, Raman 078-341-77866, Usha 0793-178-8062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.

मुझे उम्मीद है कि आपको आज का शो अभी तक जो भी हमने पेश किया गीत वो आपको पसंद आ रहे होंगे और यकीनन आने वाले गीत भी आपको अच्छे लगेंगे। बहुत ही खूबसूरत और प्यार भरे गीत हैं जिन्हें हम आपके लिए लेकर आए हैं और खूबसूरत गीतों का खजाना है जिसे लौटाएंगे हम आप पर। चाहेंगे आपका खूबसूरत सा साथ और बिताएंगे इस खूबसूरत सफर को आपके साथ साथ।

0: लिया कुमी ते पैरन ये जुतियां भी कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिनाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी नकनती लाए सिर्फ 2 पौंड ना कनस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: Are you a business looking to make a real difference across our region? The Racial Equity Networking Dinner, REND Leeds Bradford, is seeking sponsors for its not-for-profit event on Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford. Connect with influential leaders from business, education and public service. Raise your organization's profile and demonstrate your commitment to race equity, inclusion and opportunity. For sponsorship opportunities, contact Shaheen today on 0770 6923 788. Official radio partner Sunrise Radio.
3: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

आपका बहनों का बेहद शुक्रिया जो कि हमारे प्रोग्राम की जीनत बन चुके हैं और जिनका साथ और प्यार हमें मिला। आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, आपकी मशकूर और ममनून हूँ कि आप अपने कीमती वक्त से चंद लम्हे हमें नवाजते हैं। और आपका साथ हमेशा बहुत प्यारा होता है और आपके साथ साथ ये सफर और भी खूबसूरत और हंसी हो जाता है। मैं आपका जितना भी शुक्रिया अदा करूँ बहुत कम है आपके साथ का और प्यार का। एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया।

कमर्शियल्स और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका हम स्वागत करते हैं, खुश आमदीद वेलकम और जी आयनु कहते हैं। आप सबका हमारे साथ जुड़े रहने का बेहद शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि इस घंटे में भी और अगले घंटे में भी आप हमारा साथ जरूर निभाएंगे जैसे कि निभाते आए हैं। आपके साथ साथ ये सफ़र बहुत ही खूबसूरती से आगे बढ़ रहा है और आप हमारे प्रोग्राम की जीनत होते हैं और आप हमारे प्रोग्राम की रौनक होते हैं। जब आप आते हैं तो ये महफिल और भी पुर रौनक हो जाती है और हमारा सफ़र खूबसूरत और हसीन बन जाता है। आपका शुक्रिया।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Want your business to reach more customers and stay front of mind? Advertising with Sunrise Radio. Connect your brand with a loyal, engaged audience across Yorkshire and our growing DAB network. Radio builds trust, increases awareness, and gives your business repeated exposure throughout the day. And right now, as Sunrise prepares to expand even further, we're offering a limited-time special advertising package. Promote your business today with Sunrise Radio. Call 012 74 735 043.

आप हमें सुन पाते हैं सनराइज रेडियो पे 103.2 एफएम पे और www.sunriseradio.fm पे। इसके अलावा आप हमें सुन पाते हैं डीएबी के जरिए ब्रैडफोर्ड, लीड्स, मैनचेस्टर और इर्द गिर्द के इलाके में, और 100.6 एफएम पे आप हमें सुनते हैं काल्डर डेल में। इसके अलावा भी बहुत से तरीके हैं सनराइज रेडियो को सुनने के, आप के जरिए भी हमें सुन पाते हैं और नेट पे भी, गूगल के जरिए भी आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और जब चाहें जहाँ चाहें आप हमें सुन पाते हैं सनराइज रेडियो को 24 घंटे। और मैं हूँ शहनाज मंसूर, आपके साथ साथ हूँ खूबसूरत गीतों के साथ। आपका शुक्रिया।

आपने सुना जरूर आपको अच्छा लगा होगा और इसके साथ साथ आपकी बहुत सी यादें ताज़ा हो गई होंगी, क्योंकि हमेशा ऐसा ही होता है कि जब आप गीत सुनते हैं तो उसके साथ हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी होती हैं। यही नहीं कि हम गीत सुनते हैं बल्कि ये हमें वहाँ पहुँचा देता है जहाँ हमने पहली बार ये गीत सुना था, और ऐसे लगता है कि हम फिर से उसी जगह पर लौट आए हैं और वही दोस्त और वही साथी फिर से हमारे साथ बैठे हैं और इस गीत का मज़ा ले रहे हैं, और इस गीत का मज़ा और भी दुगना हो जाता है। जैसे कि ये आने वाला गीत भी हम आपके लिए लेके आए हैं, यकीनन आपकी यादों को ताज़ा करेगा और आपकी दिल की धड़कनों को भी तेज करेगा।

तीसरे और आखिरी घंटे में हम आन पहुंचे हैं आप सभी का एक बार फिर से खैर मकदम है जी आई अनु वेलकम। पिछले दो घंटे साथ निभाने का, हमारे साथ जुड़े रहने का बेहद शुक्रिया। मुझे यकीन है कि इस घंटे में भी आप ज़रूर हमारा साथ निभाएंगे और इस घंटे में भी जो गीत हम आपके लिए पेश करेंगे वो भी आप ही के लिए होंगे और आखिर तक आप ही के लिए रहेंगे। सुनते रहिएगा और साथ साथ रहिएगा। आपके साथ का शुक्रिया।

0: कफ्सिन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कवर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230 30 दास ब्रेडफोर्ड 7230 30।
2: For your family treat this summer,
3: visit the Leighton Buzzard Railway and travel on a real heritage steam train.
2: Running every Sunday, plus Wednesdays and Thursdays during the school holidays. On August Bank Holiday, come and join the Pirates Attack and bring your own water pistol.
3: And for the younger ones, don't forget your chance to come and meet Bluey on Sunday, September 6th.
2: Find more details and book your tickets at buzzrail.uk.
3: The Leighton Buzzard Railway, England's friendly little line.

0: looking for a quality home to rent.
1: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
0: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
2: क्या आप अपने कारोबार को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो के साथ तशहीर आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सारिफिन का एतमाद कायम करती है और आपके कारोबार को मुसलसल याद रखवाती है। यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लिंकशायर और मिल्टन केन्स में नशरियात और मजीद इलाकों में बहुत जल्द। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी ऑफर के लिए आज ही कॉल करें 012-747-3504-3

कहते हैं कि किसी शाम मुझे भी याद कर लिया करो, किसी शाम मुझे भी याद कर लिया करो, मैं दोस्त पुराना सही मगर जिंदा तो हूँ। और इसके जवाब में परी शाकर कहती हैं, तुमने कहा था हर शाम तेरा हाल पूछेंगे, तुमने कहा था हर शाम तेरा हाल पूछेंगे, तुम बदल गए हो या तुम्हारे शहर में शाम नहीं होती। चंद अशआर आपके गोशे गुजार किए, मुझे यकीन है कि आपने इंजॉय किए होंगे। और आप हमेशा शायरी पसंद करते हैं और शायरी बोलना भी पसंद करते हैं, और मुझे भी कभी कभी शौक आ जाता है कि आपको कुछ अशआर सुनाऊं। ऐसे ही चंद ये जो अशआर थे आपके लिए पेश किए, और अब आपके लिए लेके आ रही हूँ एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत जो कि यकीनन आप पसंद करेंगे और इंजॉय भी करेंगे।

0: कुमी ते पैरन ये जुतियां ही कसी गियन पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्का नतीला है सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: Rishi's Vision presents Anand Murthy Guruma in London. Learn timeless yogic wisdom directly from the revered master. Join a 3-day series of enlightening talks on Yog Sutras for realizing the true self, 11th to 13th September 2026. Life-changing sessions featuring profound talks, practical insights and powerful meditations at Hariben Bachubhai Nagrecha Hall, 202 Leighton Road, London, E151DY. On Friday 11th and Saturday 12th September, 6 p.m. to 8 p.m. and Sunday 13th September, 3 p.m. to 5 p.m. Free event. All are welcome. For more details, call AK Basra 07977201226. Mirdosh Kumar 07899055525. Gurkirit 07886545970. Usha 07931788062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.
3: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

का सफर बहुत ही खूबसूरत रहा क्योंकि आप हमारे हम सफर थे और इस सफर को खूबसूरत बनाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ साथ थे इसीलिए ये 3 घंटे बहुत ही खूबसूरती से और बहुत ही हसीन रहे क्योंकि आपका साथ और आपका प्यार और आपकी दुआएं हमारे साथ थी। इंशाल्लाह हमारा प्यार और हमारी दुआएं भी हमेशा आपके साथ साथ रहेंगी और हमेशा रहेंगी। आपके लिए दुआएं हैं कि अल्लाह पाक आपको हमेशा सलामत रखे। आप जहां भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें। मिलते रहेंगे सनराइज रेडियो पर इंशाल्लाह। आज की मुलाकात बस यही तक थी, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। तब तक आप सबका और हमारा अल्लाह ने के बान। बाय फॉर नाउ, खुदा हाफिज, गुड बाय।

0: ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं, ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है, ते जे तुसा पुराना सुना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
1: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
0: चाचा ज्वेलर्स ओकलैंड ब्रेफर 9 टेलीफोन 01274488935।
2: ऋषि's विजन प्रेजेंट्स आनंद उत्सव विद आनंद मूर्ति गुरुमा इन बर्मिंघम। डिस्कवर प्रैक्टिकल टूल्स टू क्वाइटन द माइंड एंड एक्सपीरियंस लास्टिंग इनर पीस डायरेक्टली फ्रॉम द रिवर्ड मास्टर। A 3-day non-residential retreat to learn ancient techniques to move from stress to stillness. From 18th to 20th September 2026. 3 enriching days power-packed with yoga, meditation, profound talks and much more. At Holiday Inn M6 Junction 7 Chapel Lane, Birmingham B437BG. Registration required. Limited seats available. For more details, call Benny 07901-831-165, Raman 07834177866, Usha 07931788062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.
3: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane, where were you when you first heard this?

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: नफ्सेन ज़ायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
2: Class, it's been reported that if we keep using water like we are now, by 2055 we could be short by 5 billion litres a day.
3: Hold on, miss. 2055? We'll be grown-ups by then.
4: We're not having that, are we?
3: No. Oi, you lot, use water and cans.
5: And fix those drips and drops.
6: And take shorter showers, yeah?
7: Because when we work together,
8: it all adds up.
9: So come on, you lot, search Let's Save Water.

0: Ladies and gentlemen, party people in the place to be, all you listeners.
1: Salaam namaste, salaam namaste.
2: जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा, हो ऐसी
3: खान
4: हम शरीफ क्या हुए,
5: मैं वापस
4: पूरी दुनिया ही बदमाश
3: देखो मैं हूँ कहाँ
4: आ रहा हूँ पलट के

0: अस्सलाम वालेकुम नमस्ते फिका खुश आमदीद वेलकम टू सनराइज रेडियो 103.2 FM आपका होस्ट दोस्त यहां पे हाजिर है मेरे नंबर पे से आई एम हियर टिल अलम कबीर शाम और आप सबके नाम रंग महफिल का प्रोग्राम है 01274306 ऑन योर लिसनिंग टू सन रेडियो 100.6 FM 103.2 FM अक्रॉस द वेस्ट यॉर्कशायर DAB प्लस ब्रैडफोर्ड कीथली इल्कली स्किप्टन लीड्स हैलिफैक्स मैनचेस्टर ईस्ट लंकशायर ब्लैकबर्न बर्ले नेल्सन डार्विन और मिल्टन कीन में हमारा प्रोग्राम सुना जा रहा है और वेरी सून वी विल बी लॉन्चिंग ऑन 2nd of the 9th 2026 ऑन वेस्ट लंदन में और सन रेडियो विल बी ऑन DAB और क्या कहने जी और यू कैन डाउनलोड सन रेडियो अप ऑन गूगल प्ले स्टोर ऑन एप्पल प्ले स्टोर और नॉट फॉरगेटिंग ऑन www.sunriseradio.fm एंड दैट इज ऑल अबाउट ऑन सन रेडियो देयर सो मेनी वे टू कनेक्ट विद सन रेडियो एंड बहुत खूबसूरत न्यूज़ है आपको ब्रेकिंग न्यूज़ है एंड आई डिड बी आई हैव बीन मेंशनिंग बिफोर एज वेल बिकॉज सन रेडियो विल be launching on 2nd of the 9th on Wednesday ki roz aur 12 baje din ko aur you can hear from the radio live and direct from midday on that will be on 2nd of the 9th which is gonna be on Wednesday midday from 12 noon 12 p.m. and there will be a very special message on airwave for that day and you have to listen in, you have to tune in to hear what they're gonna be telling you. There will be something unique, something beautiful, and you have to tune in and you have to wait for that day as well to come and you have to listen to the message. There will be a very beautiful message lineup for you and it will be launching on the 2nd of the 9th 2026 at midday and Sunday Radio will be launching on London West London May. Or tell your family, tell your friend, tell your colleague, tell everybody, doesn't matter whoever it is, tell everybody and put a reminder on your phone, on your, you know, diary, on your computer, on your wherever it is, make sure you have a reminder for that day, and because you have to tune in a 2nd of the 9th midday 12 p.m. To hear the very special message on airwaves, and which should listeners should be listening to it, and we will probably ask you a question as well. You never know as well, and if you hear it or not, and I'll probably ask you as well. Did you hear the message or did you not hear the message? But you have to tune in for that day as well. Anyway, यहाँ पे हमने क्या करना है कि hit of the hour पेश करना है, which is very important as well. और what I'm going to do is, I'm not going to play in the 8th of the hour. And what I'm going to do, I'm going to play for you ad break. Because ad break is very important. उसके बाद हमने कुछ एक और खूबसूरत पेश करना है. And यहाँ पे
1: Rishi's Vision presents Anand Murthy Guruma in London. Learn timeless yogic wisdom directly from the revered master. Join a three-day series of enlightening talks on Yoga Sutras for Realizing the True Self, 11th to 13th September 2026. Life-changing sessions featuring profound talks, practical insights, and powerful meditations at Hariben Bachubhai Nagrecha Hall, 202, Leighton Road, London, E151DY. On Friday, 11th and Saturday, 12th September, 6 p.m. to 8 p.m. and Sunday, 13th September, 3 p.m. to 5 p.m. Free event. All are welcome. For more details, call AK Basra 07977201226, Mirdosh Kumar 07899055525, Gurkirit 07886545970, Usha 07931788062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.
2: गलियां गलियां कुमी ते पैरन ये जुतियां ई कसी गियन पर सस्ता सोना नहीं मिलिया
3: ओहो ते तुसा चाचे कोल जाओ ना
2: चाचा केड़ा चाचा
3: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्का नतीला है सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवर पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने
2: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता
3: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935
4: Sunrise and Music.
0: राइट वेलकम बैक लिसनर, यू आर लिसनिंग टू रेडियो 103.2 एफएम। बहुत शुक्रिया सब दोस्तों का, लाइनें यहाँ पे चमक रही हैं, धमक रही हैं। एंड आई हैव टू डू समथिंग वेरी वेरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेल। एंड यस यू आर कॉलिंग इन, एंड बहुत शुक्रिया आप सबका भी और हमारे साथ दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका गिदन भाई हैं, हमारे पापी सुमित्रा जी हैं, बहुत शुक्रिया आपका भी वाजिद भाई हैं, आशा जी हैं, सिमी जी हैं, बहुत शुक्रिया आपने सबने हमें फ़ोन कर रहे हैं। नदीम मंसूर साहब हैं, आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और थोड़ी देर के बाद आपसे हम कलाम होगा और यहाँ पर क्योंकि हमने क्या करना है कि यहां पे अजान पेश करनी है, विच इज वेरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने मैंने सब कुछ होल्ड कर रखा है, एंड आफ्टर द अजान आई विल डू व्हाटएवर इज गोना बी। एंड बहुत बहुत शुक्रिया, यहां पे मगरिब की अजान पेश करने जा रहा हूं और अपनी अपनी मकामी टाइम टेबल देख के सुन के आपने नमाज अदा करेंगे। और मेरी तरफ से और पूरी टीम की तरफ से और माय फैमिली माय फ्रेंड ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारकबाद पेश करता हूं और पूरी दुनिया को और जो भी यहां पे मनाया जा रहा है आप सबको हम पे पेश करूं। और यहां पे आमद आमद है और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी कि आपने हमारा साथ दे रहे हैं। और यहां पे बड़े अदब अदाब से बड़े प्यार के साथ बड़े खलूस के साथ हमने अजान पेश करनी है, विच इज़ द टाइम होने वाला है यहां पे अब से। और मगरिब की अजान इन ब्रैडफोर्ड यॉर्कशायर।

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: राइट, दैट वाज द हिट ऑफ द आवर और आपने एंजॉय किया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का, जो मेरे बहन भाई हैं, साथी हैं, दोस्त अहबाब हैं, अजीज हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और यहाँ भी हमने करना टाइम चेक।
1: सनराइज रेडियो, your soundtrack, your time check.
0: Time in the studio is 26 minutes past the 8 in UK. Good evening, good afternoon, good morning, good night, wherever you are. Keep it locked in, keep it locked down with the power of his gun. बहुत बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों जो मेरे बहन भाई हैं, हमारा साथ दे रहे हैं और मुझे अच्छा लग रहा है कि आप हमारा साथ दे रहे हैं। और यहाँ पे थोड़ी देर के बाद यहाँ पे छोटी सी ब्रेक होगी, ब्रेक के फौरन बाद आई विल मेंशन यू ऑल योर नेम्स। और फिलहाल हमारा साथ दे रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया किदन भाई हैं, हमारे पापी जान स्मिता जी हैं, सारा जी हैं, आयशा जी हैं, और नदीम मंसूर साहब हैं, और अतिका साहिबा हैं, और हमारे वाजिद भाई हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका कि आप हमारे साथ, डॉक्टर मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आप हमारा साथ दे रहे हैं और हमें अच्छा लग रहा है आप भी हमारा साथ दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और ये सुन के, और मुझे खुशी हो रही है कि आप भी हमारा साथ दें। और नो फॉरगेट ऑल द चोरी चोरी छुपके छुपके लिसनर्स वेल, एंड नो फॉरगेट ऑल द साइलेंट लिसनर्स वेल जो हमारा साथ दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आप आए और बाहर आ गई है और क्या कहते हैं, यहाँ पे फूल खिल रहे हैं और खुशबू आ रही है, महक आ रही है, और सब दोस्तों का प्यार मोहब्बत है। और यहाँ पे छोटी सी ब्रेक करेंगे, कीप इट लॉक्ड।
2: Class, it's been reported that if we keep using water like we are now, by 2055 we could be short by 5 billion litres a day.
3: Hold on, miss. 2055? We'll be grown-ups by then.
4: We're not having that, are we?
3: No. Oi, hear that? It's watering cans.
5: And fix those drips and drops.
6: And take shorter showers, yeah? Because when we work together,
7: it all adds up.
6: So come on, you lot. Let's save water.
8: क्या आप अपने कारोबार को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो के साथ तशहीर आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सारिफिन का एतमाद कायम करती है और आपके कारोबार को मुसलसल याद रखवाती है। यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लिंकशायर और मिल्टन केन्स में नशरियात और मजीद इलाकों में बहुत जल्द। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी ऑफर के लिए आज ही कॉल करें 012-747-3503।

0: Wow, that was amazing tune, or one of my favorite tune. That was nice and lovely dovey track. आपने enjoy किया, बहुत शुक्रिया आपका भी. और एक खूबसूरत call आई, बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने भी हमारा साथ दे रहे हैं. Thank you very much. पहली दफे आपने हमें फोन किया, उजला अफजाई की है, दुआएं दी है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. Thank you very much. और हमें अच्छा लगे कि आप ये प्रोग्राम को सुनते हैं, पसंद करते हैं, enjoy करते हैं, और ये सुन के बहुत बहुत शुक्रिया. और देर आए दुरुस्त आए, और बहुत शुक्रिया. और आपकी भी हाजिरी लगी है, और हमारे चौधरी रुखसार भाई आपकी भी हाजिरी लगी है मेरे भाई, यहाँ पे लगी है, पक्की पेन से लग गई है, क्या है ना. बहुत शुक्रिया आपका कि आपने माशाल्लाह हमें याद किया, दुआएं दी हैं, और बहुत अच्छा लगा आप सुन के कि आप हमारा साथ दे रहे हैं. बहुत शुक्रिया आपका भी. यहाँ पे हमने क्या करना है कि टाइम चेक करना है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल. और यहाँ पे
1: सनराइज रेडियो, your soundtrack, your time check.
0: Right, ladies and gentlemen, boys and girls, according to Sunday Radio Clock, it's 47 minutes past 8 in UK. Good evening, good afternoon, good morning, good night, wherever you are. Keep it locked in, keep it locked down with the Parviz Khan. Or bahut acha laga, aur aap hi hame yaad kar rahe hain, aur the chori chori chupke chupke listeners well, I'm not forgetting, aap hi hamara saath de rahe hain, bahut shukriya aapka bhi. Rushdale mein hamara program suna ja raha hai, bahut shukriya aapka bhi. Nashir sahab, bahut shukriya aap hi hamara saath de rahe hain, aur aapne salam pesh kiya sab sunne walon ko, aur main keh raha hu वालेकुम अस्सलाम. और स्पेशली चौधरी फरियाज साहब को और उनकी पूरी टीम को सलाम पेश करें. और मुझे अच्छा लगा शाहपरी जी, बहुत शुक्रिया आपका भी, आपका भी गिला शिकवा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. कहते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं फ़ोन करने की, तो आप फ़ोन ही उठा रहे हैं. बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. जज़ाकअल्लाह खैर, हमारे लिए दुआएँ करें. बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी.

0: Right, lady and gentlemen, boys and girls, और यहाँ पे मेरा साथ देने अतीक साहब हैं all the way from Manchester से, और यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
1: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
0: कैसी तबीयत? ठीक है, ठीक है आपकी?
1: बस आपकी दुआएं हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज दिन भी ऐसा है
0: माशाल्लाह
1: वाला,
0: माशाल्लाह
1: तो अल्लाह के हुक्म से सब खुश हैं
0: जी।
1: और आमद रसूल
0: तो
1: बहुत ही खुशी की बात है,
0: तो
1: अल्लाह पाक सबको इन खुशियों हमेशा ऐसी खुशियां देखने नसीब करे,
0: आमीन।
1: और सबको ये वाला दिन बहुत मुबारक हो,
0: आमीन आमीन आमीन।
1: तो सबसे पहले तो हमारी सारी सखी सहेलियां हैं और उनको बहुत बहुत सलाम, और आपने जो आगाज किया है एक नात रसूल मकबूल से
0: जी।
1: बहुत अच्छा लगा और आपने बहुत ही खूबसूरत आगाज किया हमेशा की तरह
0: जी।
1: और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने खूबसूरत सॉन्ग भी लगाए और खूबसूरत नातें भी सुनाई के जो कि बहुत ही दिल को छूने वाली थी, तो बहुत अच्छा लगा। अल्लाह पाक इसकी जजा दे आपको, तो शुक्रिया आपका बहुत बहुत। तो इस रंगे महफिल के सब सितारों, चांद और सितारों को सलाम। हमारी सुमित्रा जी हैं,
0: अजीजर
1: भाई हैं
0: जी,
1: और रेखा जी हैं, उनको नमस्ते। उनको मैं कहती हूँ कि वो जब नहीं आते
0: जी।
1: तो बहुत ही लगता है कि पूरा प्रोग्राम अधूरा है,
0: अधूरा है। और
1: खूबसूरत
0: जी
1: उनकी जो सॉन्ग होते हैं और उनकी जो बातें होती हैं बहुत खूबसूरत होती हैं
0: जी।
1: और उनके मैसेज का भी बहुत बहुत शुक्रिया।
0: वाह जी वाह।
1: तो अपनी नशीन जी हैं, शापरी जी हैं,
0: जुलेहा
1: जी हैं, सलीना जी हैं, आसिया जी हैं, रुखसाना अफजल हैं, चौधरी फरियाद साहब हैं, वो भी हमेशा की तरह आज वो नात वगैरह जो भी पढ़ते हैं बहुत खूबसूरत सुनाते हैं। आज भी वो मुझे यकीन है कि वो बहुत खूबसूरत नात सुनाएंगे और खूबसूरत शायरी करेंगे। और नदीम मंसूर साहब हैं, उनका इंतजार हो रहेगा कि वो खूबसूरत आवाज़ सुनाएं, खूबसूरत नात पढ़ें, तो बहुत अच्छा लगेगा। और पापा जी हैं, शकील जी हैं, उनको अल्लाह करे कि आज उनकी
0: माशाल्लाह वो पिछले प्रोग्राम में मलाल हुआ, दुख हुआ, कोई लाइन ही मिली है, और आज उनको मौका मिलेगा इंशाल्लाह, और टाइम भी मिलेगा इंशाल्लाह उनको,
1: इंशाल्लाह वो खूबसूरत बातें उनकी और वो खूबसूरत शायरी सुनाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अब्दुल कयूम साहब हैं, वो भी आएंगे इंशाल्लाह। क्यानी साहब हैं,
0: मिस्टर
1: क्यानी साहब हैं, सजाद साहब हैं, साजिद पहलवान साहब हैं, फिरमान साहब हैं, महबूब इलाही साहब हैं, वो भी तशरीफ लाएंगे इंशाल्लाह। तारिक भट्ट साहब हैं, राना नवीद साहब हैं, शुक्रान भाई हैं, तो एहसान भाई हैं, और चौधरी फरियाद साहब हैं, चौधरी रुखसार साहब हैं, और राव अजहर हुसैन साहब हैं, सबको बहुत बहुत सलाम।
0: वालेकुम सलाम।
1: तो पहले तो आगाज करेंगे हम थोड़ा सा नात से।
0: जी जी बिल्कुल।
1: कहते हैं जिधर देखो उधर एक शोरे शोर बस सल्ले अला का है,
0: माशाल्लाह सुभान अल्लाह।
1: जिधर देखूं उधर एक शोर बस सल्ले अला का है,
0: माशाल्लाह।
1: ये वक्त खास शायद आमदे खैरुल वरा का है,
0: माशाल्लाह सुभान अल्लाह।
1: ये वक्त खास शायद आमदे खैरुल वरा का है, जुबान पे जिक्र हर दम रहमत लुत्फे खुदा की, तसव्वुर में रुखे रोशन मोहम्मद मुस्तफा का है। खुदाए पाक का इरफान है बस उल्फत मोहम्मद की, खुदा का है वही आशिक जो महबूब खुदा का है। मुअल्लम है खुदा इसका जिसे सब कहते हैं उम्मी, खुदाई का है मालिक जो मकी गारे हीरा का है।
0: बहुत खूब।
1: रुखे अनवर पे इसके देख लो खालिक के जलवों को, मोहम्मद नाम है जिसका वो आईना खुदा का है।
0: माशाल्लाह माशाल्लाह।
1: जमी व आसमां लोहो कलम अर्शे बरी जन्नत, खुदा का जो कुछ भी है वो सब हबीबे किबरिया का है।
0: माशाल्लाह सुभान अल्लाह।
1: करूं कुर्बान ना क्यों दोनों जहां की नेमतें इस पर, ये गम बख्शा हो इस जाने वफा का है।
0: वाजिबा क्या कहने,
1: जिधर देखो उधर एक शोर बस सल्ले अला का है,
0: माशाल्लाह सुभान अल्लाह।

करके पाया जाता। काश मैं दोरे पे अंबर में उठाया जाता।

फिर मुझे राहे मोहम्मद में बिछाया जाता, काश मैं दोरे पे अंबर

0: काशी में दोरे पे अंबर में उठाया जाता। तो ये तो सरकारी मदीना,
1: माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह।
0: तो थोड़ी शार है।
1: जी जी इरशाद।
0: यूं ही बेयकीन यूं ही बेनिशान मेरी आधी उम्र गुजर गई,
1: वाह
0: कहीं हो ना जाऊं मैं रहेगा मेरी आधी उम्र गुजर गई।
1: वाह जी वाह क्या कहने।
0: कभी साहिबाना था अब हम, कभी कहकशां थी कदम कदम, कभी बेमकां कभी लामकां मेरी आधी उम्र गुजर गई।
1: बहुत खूब।
0: तेरे वसल की जो नवीद है वो करीब है के बईद है,
1: वाह
0: मुझे कुछ खबर तो हो जाने जा मेरी आधी उम्र गुजर गई।
1: बहुत खूब बहुत खूब।
0: कभी मुझको फिक्रे माश है कभी आप अपनी तलाश है, कोई गुर बता मेरे नुक्ता दा मेरी आधी उम्र गुजर गई।
1: बहुत खूब बहुत खूब।
0: कभी जिक्रे हरमते हर्फ में कभी फिक्रे आमदो सर्फ में,
1: वाह
0: यूं ही रिज़्क़ो इश्क के दरमियां मेरी आधी उम्र गुजर गई।
1: वाह।
0: कोई ताना जन मेरी जात पर कोई खंदा जन किसी बात पर,
1: वाह
0: पिए दिल नवाजी दोस्तां मेरी आधी उम्र गुजर गई।
1: वाह।
0: अभी वक्त कुछ मेरे पास है ये खबर नहीं है बेकयास है,
1: वाह
0: कोई कर गिला मेरे बदगुमां मेरी आधी उम्र गुजर गई।
1: वाह जी वाह क्या कहने।
0: उसे पा लिया उसे खो दिया कभी हंस दिया कभी रो दिया, बड़ी मुख्तसर सी है दास्तां मेरी आधी उम्र गुजर गई।
1: वाह।
0: तेरी हर दलील बहुत बहुत बजा मेरा इंतजार बीता को जा, तेरी हर दलील बहुत बजा मगर इंतजार बीता को जा।
1: वाह।
0: जरा सोच तू मेरी जारियां मेरी आधी उम्र गुजर गई।
1: बहुत खूब बहुत खूब।
0: के दुख की लहर ने छेड़ा होगा याद ने कंकर फिर फेंका होगा, आज तो मेरा दिल कहता है तो उस वक्त तू अकेला होगा।
1: बहुत खूब बहुत खूब।
0: मेरे चूमे हुए हाथों से औरों को खत लिखता होगा, दीख चली अब रात की पलके तू अब थक के सोया होगा।
1: बहुत खूब।
0: रेल की गहरी सीटी सुनकर रात को जंगल गूंजा होगा, शहर के खाली स्टेशन पर कोई मुसाफिर उतरा होगा।
1: बहुत खूब।
0: आंगन में फिर चिड़िया बोली अब सोकर उठा होगा, यादों की जलती शबनम से फूल सा मुखड़ा धोया होगा।
1: वाह।
0: मोती जैसी शक्ल बनाकर आईने को तकता होगा, शाम हुई अब तू भी शाहिद अपने घर को लौटा होगा।
1: वाह।
0: नीली धुंधली खामोशी में तारों की धुन सुनता होगा।
1: बहुत खूब।
0: मेरा साथी शाम का तारा तुझसे आंख मिलाता होगा।
1: वाह जी वाह।
0: शाम के चलते हाथ ने तुझको मेरा सलाम तो भेजा होगा।
1: वाह।
0: शाम के चलते हाथ ने तुझको मेरा सलाम तो भेजा होगा।
1: वाह।
0: प्यासी कर लाती गूंजों ने मेरा दुख तो सुनाया होगा।
1: वाह।
0: मैं तो आज बहुत रोया हूँ तू भी शायद रोया होगा।
1: वाह जी वाह।
0: नासिर तेरा मीत पुराना तुझको याद तो आता होगा।
1: वाह।
0: देख कर लहर ने छेड़ा होगा याद ने कंकर फेंका होगा।
1: वाह जी वाह।
0: शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं इतने समझौते के जीते हैं के मर जाते हैं। शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं इतने समझौते पे जीते हैं के मर जाते हैं। हम तो बेनाम इरादों के मुसाफिर ठहरे, कुछ पता हो तो बताएं के किधर जाते हैं। घर की गिरती हुई दीवार हमसे अच्छी, घर की गिरती हुई दीवार है हमसे अच्छी, रास्ता चलते हुए लोग ठहर जाते हैं।
1: वाह।
0: एक जुदाई का वो लम्हा के जो मरता ही नहीं।
1: वाह।
0: लोग कहते से सभी वक्त गुजर जाते हैं।
1: वाह।
0: फिर वही तलही हालात मुकद्दर ठहरी, नशे कैसे भी हों कुछ दिन में उतर जाते हैं।
1: वाह वाह।
0: शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं।
1: वाह,
0: इतने समझौते पे जीते हैं कि मर जाते हैं।
1: क्या कहने, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया, अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें, बहुत बहुत शुक्रिया,
0: थैंक यू,
1: बहुत बहुत शुक्रिया। Right, that was अतिका साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमने छोटी सी ब्रेक करेंगे और ब्रेक के फौरन बाद यहाँ पे धमाका होगा क्योंकि वो आ गए, वो छा गए, हमारा साथ दे रहे हैं हमारे मौजूद मेहमान, हमारे अपने, हमारे सजन और सजनों की महफिल, और सजन आ रहे
2: Class, it's been reported that if we keep using water like we are now, by 2055 we could be short by 5 billion litres a day.
3: Hold on, miss. 2055? We'll be grown-ups by then.
2: We're not having that, are we?
3: No. Oi, hear that? It's water and cans.
4: And fix those drips and drops.
5: And take shorter showers, yeah? Because when we work together,
6: it all adds up.
7: So come on, you lot. Search Let's Save water.
8: Rishi's Vision presents Anand Murthy Guruma in London. Learn timeless yogic wisdom directly from the revered master. Join a three-day series of enlightening talks on Yoga Sutras for realizing the true self, 11th to 13th September 2026. Life-changing sessions featuring profound talks, practical insights and powerful meditations at Hariben Bachubhai Nagrecha Hall, 202 Leighton Road, London, E151DY. On Friday 11th and Saturday 12th September, 6 p.m. to 8 p.m. and Sunday 13th September, 3 p.m. to 5 p.m. Free event. All are welcome. For more details, call AK Basra 07977201226. Mirdosh Kumar 07899055525. Gurkirit 07886545970. Usha 07931788062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.
1: Right, welcome back and listening. You're listening to Radio 13.2 FM. और यहाँ पे हमारा साथ दे रहे हैं हमारे मोहतरम, हमारे भाई, हमारे दोस्त नदीम मंसूर साहब हमारे साथ दे रहे हैं। यहाँ पे कहेंगे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
9: वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब
1: जनाब आला, कैसी तबीयत है? ठीक ठाक, ठीक है आपकी?
9: अल्लाह पाक का शुक्र करम, आप सुनाए कैसे हैं?
1: अल्लाह पाक का करम करम करम, मौला का करम है, आप तक बात बनी हुई है, माशाल्लाह
9: माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए आज मैं आपको एक मोहम्मद रफी मरहूम का एक गीत सुनाता हूँ।
1: जी जी।
9: और उसके बाद चंद माहिए हैं उनके इशारा में।
1: हाय हाय हाय हाय, क्या कहने क्या कहने, वाह जी वाह वाह वाह वाह वाह वाह जी।
9: तो ये आपकी नजर, सबकी नजर जो आ चुकी है उनके भी सलाम, जो आने वाले हैं उनका भी सलाम।
1: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
9: शेर का हुस्न हो,
1: वाह

0: Да.
1: Жизнь лета, жизнь лета, ке аджанта ка омлия дае.

0: बहुत शुक्रिया। और अब
1: कमाल का दिया, कमाल कमाल,
0: बहुत शुक्रिया,
1: बहुत खुशी लगी चुना आपने जी।
0: और पंजाबी ने ये माही, वैसे पंजाबी के ही होते हैं तो ये आपकी नजर सबकी नजर
1: आए। हाय क्या कहने
0: बदला।

0: वाह
1: बदनाम विचों कालंग दे
0: वाह
1: ओ बदनाम विचों कालंग दे
0: वाह
1: पैवन जुदाइयां चना

0: वाह
1: ओ कोई कलम से आई वाला
0: वाह
1: ओ कोई कलम से आई वाला
0: वाह
1: के तू दसा में चना हाल अपनी जुदाई वाला के

0: पल्ला ओ कोई पल्ला वे नचोड़िए ओ कोई पल्ला वे नचोड़िए
1: वाह
0: लुकी लुकी

0: वाह
1: कोई अमदा अचारों सी
0: वाह
1: ओ कोई अमदा अचारों सी
0: वाह
1: ओ कोई अमदा अचारों सी
0: वाह
1: ओ कोई अमदा अचारों सी ओ उस वेले माई मिल सी
0: वाह वाह
1: मेरा कफन तैयारों सी
0: होई होई क्या कहने वाह
1: ओ उस वेले माई मिल सी ओ जदों कफन तैयारों सी शीशा वेख के बंद कीता
0: वाह
1: ओ शीशा वेख के बंद कीता

0: काठी टूट गई है कोड़े दी ओ काठी टूट गई है कोड़े दी सारिया मर्ज़ा कोलों
1: वाह

0: क्या कहने मेरे भाई उन्होंने ना वो हीरा खान कहने उन्होंने कि कोई छोड़े मैंने कहा जबरदस्त है क्या एक दिन आए ना मेरे प्रोग्राम में और चौधरी फरियाद साहब गाना गुनगुना रहे थे तो बाद ही आए कहने के कोई छोड़े मैंने वाह जी वाह क्या कहने जबरदस्त जबरदस्त बहुत बहुत शुक्रिया सर और बड़ा ही अच्छा लगा और अपने गीत गुनगुनाए और माइया गुनगुनाया बहुत बहुत शुक्रिया मेरे क्या आवाज़ मेरे भाई आपने पाई है और आप ऑल राउंडर हो गए क्या कहने वाह बहुत बहुत शुक्रिया सर बहुत बहुत शुक्रिया वाह जी अल्लाह हाफिज़ बहुत बहुत शुक्रिया आपका आप आए हो बहुत बहुत अच्छा लगा ये हमारे नदीम रसूल सर कमाल की और आजकल वो गाना भी गुनगुना रहे और माइया भी और पीछे रह गया क्या कहने क्या कहते हैं पीछे जो ना वो शायरी और शायरी भी करेंगे इंशाल्लाह और क्या कहने इनका बहुत बहुत शुक्रिया और यहाँ पर हमारा साथ दे रहे हमारे गुरु जी हैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू आप आ गए और हमें एनर्जी मिल गई है
1: अच्छा नहीं हम मेरे तो प्रतीका जी आए तभी से एनर्जी मिली
0: वाह जी वाह क्या कहने
1: और सब ठीक ठाक
0: अल्हम्दुलिल्लाह पाक का शुक्र करम आप आए हैं और हमें अच्छा लगा और बाबी जान से भी पिछले आवर में हम कलाम हुए और वाकई दोस्त में भी आएंगी तो वो उनको भी हम सुनेंगे तो हमें अच्छा लग रहा है कि आप जैसे माशाल्लाह इतने खूबसूरत हैं और आप गुफ्तगू करते हैं ऐसा लग रहा है कि फूल खिल रहे हैं माशाल्लाह जी
1: चलो हाँ तो पहले मैं सबको सलाम बोल दूँ
0: जी
1: जो हमारा शकील भाई है बानली वाला होप कि आज वो जल्दी आए तार बदलाई होगी
0: उनको लाइन नहीं मिली है उनको पिछले हफ्ते और आज उनको जी
1: उसने दो इंच की तार लगाई
0: दो इंच की चार तार लगा लें ठीक है जी आज
1: तो उसकी लाइन लगेगी जगह
0: जी जी जी जी माशाल्लाह
1: फिर उसके बाद जावेद मीर भाई है हमारा
0: जी
1: मोहम्मद हनीफ भाई है साजिद भाई है वाजिद भाई को कैसा है अभी
0: माशाल्लाह वो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी
1: चलो खुदा करे ठीक रहे
0: जी
1: हमारा उस्ताद चौधरी फरियाद भाई है
0: जी
1: सजाद पहलवान है इकबाल भाई है
0: जी
1: शेख हसन
0: जी
1: भाई है पापा सुफी के डॉक्टर मलिक साहब है
0: जी
1: हमारा मोहम्मद रफी जी है
0: वाह
1: कयूब साहब है
0: अब्दुल कयूम साहब जी जी
1: परवेज खान है हमारी बहन समीना खान है
0: जी
1: आतिया जी है अतिका जी सलीना जी
0: जी
1: किशनी जी रेखा जी हमीदा जी
0: सारा जी
1: मिस्टर मिसेस पटेल जी और अतिका जी का सभी लिस्ट को हमारा बहुत बहुत सलाम
0: वालेकुम अस्सलाम
1: अतिका जी ने आज बहुत अच्छा
0: कलाम सुना जी जी जी बहुत खूबसूरत जी
1: अच्छा तो ये थोड़ा सा है वो मैं
0: जी जी जी
1: तलत महबूब साहब का
0: हाय हाय क्या कहने
1: मेरी याद में तुम ना आंसू बहाना मिट्टी को जलाना मुझे भूल जाना
0: क्या कहने
1: ना के था एक सपना

0: जलाना, दिल को जलाना, मुझे भूल जाना।
1: वाह वाह वाह वाह।
0: के था एक सपना सुहाना।

0: नगरी को जलाना, मुझे भूल जाना, तेरी याद में
1: क्या के
0: रो रो के कहता है टूटा हुआ दिल।

0: काबिल,
1: हाय हाय हाय
0: मेरा नाम तक अपने लबू पे न लाना, रजी को जलाना, मुझे भूल जाना,
1: वाह
0: मेरी याद में तुम ना आंसू बहाना,
1: हाय हाय हाय
0: रजी को जलाना, मुझे भूल जाना,
1: वाह वाह
0: वजना के था एक सपना।

0: मेरी याद में।
1: वाह वाह वाह वाह वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। गुरु जी ऐसा लग रहा था कि आप जो जो है वो इतनी खूबसूरत आपकी आवाज़, बड़ा प्यारा आवाज़ आपकी, और इसमें कोई शक नहीं है, और ऐसे ही लग रहा था कि जैसे फिल्म में गाना था, और ऐसी आपकी आवाज़ है और बड़ा ही खूबसूरत। वाह
2: हा
1: हा, क्या कहने
2: जी को जलाना, मुझे भूल जाना।
1: ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आपका आपका शुक्रिया अदा करें, डॉक्टर मालिक साहब का शुक्रिया अदा करें, और शालीन जो है ना वो आपका तारीफ की, उन्होंने तारीफ की आपकी, और उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया, और बहुत अच्छा लगा।
0: सब तो बहुत बहुत सलाम। आप बोलते कि फिल्म जिस आवाज है, लेकिन काम नहीं मिल रहा ना।
1: नहीं नहीं नहीं नहीं, इतनी इतनी प्यारी आवाज, ऐसा ही लग रहा है जैसे फिल्म में था, और इतनी प्यारी आवाज, बहुत ही खूबसूरत, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। और जितनी भी मैं आपकी तारीफ करूं कम है, और बड़ा ही अच्छा लगा। और हम देखेंगे कि हमारी भाभी जान कौन सा गीत लेके आएंगी। अभी मैंने जब हम छोटी सी ब्रेक करेंगे, और उसके बाद अजान ब्रेक होगी, आप थोड़ा सा होल्ड करेंगे भाभी जान, आई रियली रियली अप्रिशिएट इट। और आप इस अजान को सुने, और आप सभी सुनेंगे थोड़ी देर के बाद, और हमें अच्छा लगेगा भाभी जान थोड़े आराम से आएंगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया, तो आप दोनों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत ही खूबसूरत है आपकी दोनों की आवाज़ है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। और यहाँ पे हमने करना है, टाइम चेक करना है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज़ वेल। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।
3: Sunrise Radio, your soundtrack, your time check.
1: The time in the studio is 46 minutes past 9 in UK. Good evening, good afternoon, good morning, good night, wherever you are. Keep it locked on, keep it locked on with the Parviz Khan. यहाँ पे छोटी सी नन्ही मिनट ब्रेक की, ब्रेक फौरन बाद यहाँ पे थोड़ी देर के बाद है अजान ब्रेक भी होगी। Keep it locked with the Sunrise Radio.
4: कुल्लू नफसेन जायकातुल मौत।
5: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम, इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
3: Rishi's Vision presents Anand Murthy Guruma in London. Learn timeless yogic wisdom directly from the revered master. Join a three-day series of enlightening talks on Yoga Sutras for realizing the true self, 11th to 13th September 2026. Life-changing sessions featuring profound talks, practical insights and powerful meditations at Hariben Bachubhai Nagrecha Hall, 202 Leighton Road, London, E151DY. On Friday 11th and Saturday 12th September, 6 p.m. to 8 p.m. and Sunday 13th September, 3 p.m. to 5 p.m. Free event. All are welcome. For more details, call AK Basra 07977201226. Mirdosh Kumar 07899055525. Gurkirit 07886545970. Usha 07931788062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.

Right, welcome back, listener. You're listening to Sunday Radio 103.2 FM, और यहाँ पे क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे हमने अजान पेश करनी है, और वो भी टाइम के साथ हम अजान पेश करेंगे। अभी थोड़ा टाइम रह गया है, और यहाँ पे जो हमारा टाइम टेबल है उसके साथ के साथ हम चलेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों, जो भी मेरे बहन भाई हैं, साथी हैं, दोस्त अहबाब हैं, अजीज़ हैं, हमारा साथ दे रहे हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी, और जो हमारा साथ दे रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया उनका भी, और जो अभी साथ देने वाले हैं उनका मैं शुक्रगुजार हूँ, ममनून हूँ, और दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे मकामी टाइम टेबल को देख के अपने नमाज अदा करेंगे, मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, और पूरी टीम के लिए दुआ करनी है। और यहाँ पे इशा की अजान होगी ब्रैडफोर्ड में, यॉर्कशायर में, और जो हमारा टाइम टेबल है उसके साथ हम करेंगे अजान पेश करेंगे। यहाँ पे कुछ सेकेंड रह गए हैं, और मेरी कोशिश यही होती है कि टू द डॉट, टू द पॉइंट करें, और ये वही बात हो रही है। और बहुत बहुत शुक्रिया, फिर ड्राइव इन एंड ड्राइव विद केयर, एंड फिर आउट एंड अबाउट स्टिक अराउंड विद द सुन्नत रेडियो 3.2 FM, और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप ही हमारा साथ हैं। थैंक यू वेरी मच ऑल दोज ब्यूटीफुल लिसनर्स, और यहाँ पे टू द डॉट, टू द पॉइंट, और यहाँ पे अजान।

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: classic hit of the hour, brought to you by Sunrise Radio Gold, taking you down memory lane with non-stop classic hits from 50s to the 90s. SunriseRadioGold.com.
1: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane, where were you when you first heard this?
2: राइट, वेलकम बैक लिसनर, योर लिसनर सुन रेडियो, और यहाँ पे हमारा साथ दे रहे हैं हमारे भाभी जान। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहु। जी भाभी जान।
3: वालेकुम सलाम भैया।
2: हाउ आर यू भाभी जान, ठीक हो?
3: फाइन, टॉप ऑफ द मून।
2: टॉप ऑफ द मून, अच्छा लगा ये सुन के माशाल्लाह। और डबल ए वन हो गया, प्लस हो गया, क्या कहने जी, टॉप ऑफ द मून, वाह वाह वाह वाह, क्या कहने, बहुत बहुत शुक्रिया। और बाकी सब ठीक ठाक? माशाल्लाह, अच्छा लगा माशाल्लाह। और आज गुरु जी ने कमाल कर दिया, इतना खूबसूरत गीत उन्होंने गुनगुनाया, ऐसा लग रहा है जैसे फिल्म में था, और बहुत प्यारी आवाज इनकी। मिलेगी क्यों नहीं, मिलेगी क्यों नहीं, अभी मना रहे, अभी टाइम है। ये तो चलो कोई बात, अभी भी हम मिला लेते, कोई इससे कोई मसला नहीं है, क्योंकि इनकी बड़ी प्यारी आवाज है जी, बड़ी खूबसूरत आवाज है, कोई बड़ी प्यारी आवाज है, बड़ी प्यारी आवाज है, ये तो ऑलराउंडर हो गए, कोई भी गाना हो, कोई भी नया हो, पुराना हो, इतनी खूबसूरत इनकी आवाज, बड़ी प्यारी आवाज है जी, इसमें कोई शक नहीं है। भाभी जान अपना गाना शुरू कर दें, और थोड़ी देर के बाद 5 मिनट रह गए इस आवर के, और उसके बाद न्यूज ब्रेक होगी, आप कोई गाना गा लें, और थोड़ा देर फिर ब्रेक लगा लें, तो फिर नेक्स्ट आवर में मैं स्ट्रेट वे आपको लेके आऊंगा, ठीक है ना, जैसे भी आपकी मर्जी होगी। आप पहले पहले सबको सलाम पेश कर दें, तो फिर आराम से हम गाना सुनेंगे आपकी आवाज में, पहले सबको सलाम पेश, अभी थोड़ा टाइम है सबके लिए। नहीं नहीं, कोई कोई बात नहीं, आप सलाम कर दें, तो थोड़ा जो होल्ड कर लें, तो फिर मैं आपको नेक्स्ट आवर में लेके आऊंगा, तो फिर आपने गाना भी गुनगुना सकेंगे आराम से, कोई रुश नहीं होगा। जी जी, गाना कोई बात नहीं, कोई गाना गाने, कोई मसला
3: नहीं,
2: जी जी, कोई कोई मसला नहीं, जी जी जी जी जी जी जी जी जी
3: जी जी
2: जी जी
3: मेरे दिल कहीं और की दुनिया से दिल भर गया,
2: वाह वाह वाह,
3: दिल कहीं और चल चल जहाँ गम के मारे न हो,
2: वाह,
3: आशा की तारी न हो,
2: वाह,
3: आशा की तारी न हो,
2: वाह,
3: इन बहारों से क्या फायदा,
2: वाह,
3: इसमें दिल की गली जल गई,
2: वाह,
3: मौसम से हरा हो गया,
2: वाह,
3: मेरे दिल से और चल,
2: वाह,
3: चार आंसू कोई रो दिया, मुंगी कोई चल दिया, चार आंसू कोई रो दिया, फिर मुंगी कर चल दिया, फिर मुंगी कर चल कर दिया, जहाँ दिखती रह गई जमीन, चुप रहा बेरहम आसमां, मेरे दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले अब कोई घर नया, मेरे दिल कहीं और चल,
2: वाह वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल होय होय होय होय और मिस्टर मिसेज पटेल आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, सिमी जी उनकी पूरी फैमिली ने आपके फूल भेजे उन्होंने और बड़ा ही गाने को पसंद है, दोनों को पसंद किए, बड़ा ही अच्छा लगा। जी जी नेक्स्ट आवर में आप करना चाहते हैं ना, आप दो मिनट वेट करेंगे, तीन मिनट तो आप एक और गाना चाहती गा सकती, कोई मसला नहीं, आपको वेट करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, कोई बात, बहुत बहुत शुक्रिया आप आई हैं और हमें अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, और सब ने आपके लिए सलाम पेश किया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत
3: शुक्रिया।
2: शकील साहब आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें, बहुत बहुत शुक्रिया, रब रखा, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। राइट दैट वाज पापी जान, और यहाँ पे हमने न्यूज़ बेल करनी है, कीप लॉक्ड टू सनराइज रेडियो,
4: ब्रॉडकास्टिंग टू द एशियन कम्युनिटी 24 आवर्स अ डे, दिस इज सनराइज रेडियो, on the hour, every hour. This is Sunrise Radio Network News.
5: From the Sky News Centre at 10, officials in Nepal say more than 150 people have died after the country's border area was hit by flash floods. A 13-year-old girl is reported to be among at least 33 British citizens said to be missing. Footage shows walls of mud sweeping away buildings. One local journalist says it's like something out of the movies. Mona Sherpa from the charity Care Nepal says it's not the first time the region's experienced an extreme weather event.
6: The Rasuwa district is very much disaster-prone area, and then last year and even before that, several floods, flash floods, landslides has happened.
5: The owner of Facebook and Instagram's agreed to pay up to £12 billion to settle US claims its platforms harm children. Meta still denies designing features that get children hooked. A child's among two people who've died in a house fire less than a mile from the scene of a crash on Teesside on Saturday that killed seven people, including two officers. Police in Middlesbrough have made two arrests. Experts are urging households in Britain on standard variable tariffs to switch after a 4% rise in the energy price cap. A typical home will now pay around an extra £60 a year from October. Here's what shoppers in Northampton think.
7: It will be a worry when the winter comes.
8: They always blame it on the war, everything goes up, doesn't it, all the time.
9: People that need electric or mobility scooters, but simple thing is a kettle, can't afford it, so how are they going to live? And then that means they're going to go into hospital to get it.
5: Tim Curry, star of the Rocky Horror Picture Show, has died at the age of 80. He also played Rooster Hannigan in Annie. And Heroic Hearts overcame a red card to pull off a stunning penalty shootout victory away to Rapid Vienna and book their place in the Conference League. The Edinburgh club battled to a 2-2 draw. In the EFL Cup, there were wins for Tottenham, Everton and Newcastle. That's the latest. I'm Faye Rowlands.
10: Sunrise Radio Network News.
11: A man has been sentenced to 25 years after admitting the attempted murder of a woman in Leeds. 34-year-old Ibrahim Al-Bashir attacked the woman near a bus stop on Otley Road in March 2024. Security staff from the original Oak pub heard her screams, intervened to stop the attack, and detained Al-Bashir until police arrived. He has also been made subject to a hospital order. Police praised the security staff, saying their actions may have prevented the incident from becoming a murder investigation. A police campaign encouraging young people to talk openly about consent is coming to Leeds Festival for the first time. West Yorkshire Police will join partners and volunteers to run Consent Conversations, following the campaign's success at Reading Festival. More than 3,500 people took part in discussions there last year. Police say the informal sessions aim to challenge misconceptions, prevent harmful behaviour, and help young people better understand consent. Festival goers will be able to visit dedicated Consent Conversations tents throughout the event. Plans have been submitted to build 25 new affordable council apartments in Farsley. Leeds City Council wants to redevelop the former Richmond House care home site on Richmond Road with one and two bedroom properties for people on the city's housing register. Earlier plans for 33 apartments were scaled back following concerns from local residents. The proposed homes would include energy-efficient features, landscaped areas, and electric vehicle charging. The council says the development would help tackle a shortage of affordable housing in Fawsley. This is Sunrise Radio News with James Hawksworth. Plans to officially turn a former Halifax pub into a builders and plumbers merchants have been rejected. Ufix Building Supplies had sought retrospective permission for the former Horse and Jockey Inn on Worley Road. Nearby residents complained about noise, dust, debris and smoke, while the council's environmental health team also raised concerns. Planning officers concluded the development would have an unacceptable impact on neighbouring homes and would cause visual and heritage harm to the area. Calderdale Council has now refused the application. That was Sunrise Radio News.

0: राइट, वेलकम बैक लिसनर, यू आर लिसनिंग टू रेडियो 103.2 एफएम। और यहाँ पे जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि हमारे साथ काफी कॉलर्स हैं और यहाँ पे हमने करना है टाइम चेक।
1: सनराइज रेडियो, your soundtrack, your time check.
0: Well, I'm in the studio, 86 minutes past 10 in UK. Good evening, good afternoon, good morning, good night, wherever you are. Keep it locked on with the Parviz Khan. Yahan pe hamare saath de rahe hain hamare mauzood mehmaan hain, hamare apne hain aur hamare ustad hain mohtaram mein. Aur yahan pe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: जी बिस्मिल्लाह कर, बिस्मिल्लाह।
2: इजाजत मिली या नहीं?
0: नहीं नहीं, आप कर ले, आप जो कलाम अपने पे पेश करना है कर ले, कोई बात नहीं। जी जी बिस्मिल्लाह कर।
2: मैं आपको सब पार्टियों को सुनने को ईद मिलाद मुस्तफा के दिन की निस्बत से सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ।
0: जी जी,
2: आज मैं अल्लामा इकबाल के दो तीन शेर के टुकड़े में पढ़ा रहा हूँ तो पूरा कलाम नहीं सुना सकूंगा।
0: जी,
2: अल्लामा इकबाल इरशाद फरमाते हैं
0: जी
2: कि सुबह होती है शाम होती है,
0: जी
2: उम्र तमाम होती है।
0: क्या कहने,
2: उसके मुकाम को शायर को और कहता है
0: जी जी,
2: जिन की हम हमेशा उन पर अपना दारो मदार रखते थे वही आज हमें हवा देने लगे हैं।
0: क्या कहने,
2: और मियां साहब ने बड़ा खूबसूरत इरशाद फरमाया
0: जी जी,
2: यारा नहीं कर दे ओ पक्की प्रीत जिना दी अदबा ओ बेअदबा मकसूद ना हासिल ओ ना दरगाए कोई ओ ते मंजिल मकसूद ना पहुंचे।
0: माशाल्लाह
2: माशाल्लाह, अदब तू कोई हमारे इलाके के
0: जी जी
2: इताए कश्मीर के बड़े जैयद आलम और जैयद सैयद सैयद पीर बाकर शाह,
0: माशाल्लाह
2: के लिए एक बात कही है
0: जी जी,
2: वो अपनी शायरी में कहते हैं
0: जी जी,
2: हैदर शाह जदू तुसा नालो सो, हैदर शाह जदू तुसा नालो सो, ओ पूरा कश्मीर पाकिस्तान वो सी,
0: हैदर
2: शाह जदू तुसा नालो सो, पूरा कश्मीर पाकिस्तान वो सी। शाह ने कहा कि लीडरो मुसलमान लीडरो
0: जी,
2: अपने आप को इस काबिल बनाओ, दिल को मुसलमान बना दो, फिर तुम्हारी मुंह से तुम्हारे कलम जुबान से जो बात निकलेगी वो इतना असर अंदाज करेगी कि वो पूरी जमीन में तुम्हारी जुबान की बल्ले बल्ले हो जाएगी और तुम्हारी वजह से जो जो तुम आजादी चाहोगे तुम आजादी हासिल कर लोगे, लेकिन बशर्ते तुम अल्लाह अल्लाह के रसूल के सामने सिलेंडर हो जाओ, उसके लिए बिल्कुल हाथ खड़े कर दो, वो तौबा करो, वो तौबा करने के बाद अल्लाह तुम्हारी बात मान लेगा। बहुत बहुत शुक्रिया,
0: जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया और अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें, बहुत बहुत शुक्रिया खैर, बहुत अच्छा लगा आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे मोहतरम अहम खान जी, बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी, और हमें अच्छा लग रहा है आप हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और बहुत शुक्रिया आपका भी, आप हमारा साथ दे रहे हैं और यहाँ पर हमारा साथ दे रहे हैं हमारे मोहतरम में भाई हैं, दोस्त हैं, और भाई शुक्राना, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
3: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर जी, जश्न ईद मिलाद नबी।
0: जी जी, सलाम और आपको भी। जी जी
3: जी जी, और सुनाए कैसे हैं आप?
0: अल्लाह पाक का शुक्र है, शुक्र है मौला का करम है, आप सुनाए?
3: आज तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पहले फर्स्ट टाइम पे कॉल मिल गई है।
0: माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, क्योंकि मैंने कोशिश कर रहा हूँ कि सबको जल्दी जल्दी लेके आऊँ और अच्छा लगा, माशाल्लाह। जी जी
3: शेर जी, वो किसी तरह से भी मेरा ना हुआ,
0: हाय
3: वो किसी तरह से भी मेरा ना हुआ,
0: वाह
3: वरना इस जहां में क्या नहीं होता,
0: वाह जी वाह।
3: तो गाना जी भूल जाने का हुनर
4: वाह वाह वाह
3: मुझको सिखाते जाओ
4: वाह वाह
3: जा रहे हो
4: वाह वाह
3: सभी लक्ष्य मिटाते जाओ
4: वाह क्या कहने
3: चलो रसमन सही मुड़ के तुझे देख तो लो
4: वाह
3: तोड़ते तालुकियों
4: वाह
3: निभाते जाओ
4: वाह क्या क्या
3: बड़े तुम नजर थे गुनाहगार थे हम मगर तेरे दिल को लुभाते रहे हैं
4: वाह वाह वाह वाह
3: यही सोच कर तुम भुला दो
4: वाह वाह
3: तुम्हें हम बहुत याद आते रहे हैं कहीं अब मुलाकात हो जाए गए तो चुरम के नजरियों गुजर जाएगा
4: वाह
3: जीना है मेरे बिना जीना है अब मुझको मेरे बिना
4: क्या कहने वाह
3: थैंक यू
0: बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई का और इतनी खूबसूरत आपने आवाज़ पाई है बहुत अच्छा लगता है जब भी आप शिक्र करते हैं प्रोग्राम में और बहुत बहुत शुक्रिया अपना ख्याल रखें दुआओं में याद रखें और ऐसे ही हंसते रहें खेलते रहें और खिलते रहें और बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी मच बहुत बहुत शुक्रिया सर बहुत बहुत शुक्रिया रब रखा बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी मच वाओ क्या कहने जी क्या कहने और यहाँ पे हमारा साथ दे रहे हैं हमारे बहुत ही खूबसूरत भाई हैं और जितनी भी मैं तारीफ करूँ कम है और जहाँ छोटी ब्रेक नहीं ब्रेक के फौरन बाद यहाँ पे धमाका होगा और सब आ रहे हैं और शकील साहब आप ही आ जाएं
5: क्या आप अपनी अंग्रेजी बेहतर करना चाहते हैं क्या आप अपनी मैथ्स बेहतर करना चाहते हैं शिपली कॉलेज आपकी मदद कर सकता है शिपली कॉलेज मुफ्त में इंग्लिश मैथ्स ईसॉल कोर्सेज चाहे आपको नौकरी हासिल करना है या आपको सिर्फ एतमाद महसूस करना है हम आपकी मदद के लिए मौजूद हैं बहुत से कोर्सेज अहलियत की शरायत पर होने पर मुफ्त हैं مزید معلومات کے لیے شپلی کالج پر ویب سائٹ جائیں
6: Class, it's been reported that if we keep using water like we are now, by 2055 we could be short by 5 billion litres a day.
7: Hold on, miss. 2055, we'll be grown up by then.
8: We're not having that, are we?
7: No. Oi, hear that? It's water and cans.
9: And fix those drips and drops.
10: And take shorter showers, yeah?
11: Because when we work together,
12: it all adds up.
13: So come on, you lot. Search Let's Save Water.
14: Sunrise and music.
0: राइट वेलकम बैक लिसनर योर लिसनर सुनर रेडियो और यहाँ पे हमारे मोहतरम में हैं हमारे भाई हैं हमारे दोस्त हैं हमारे सुपरस्टार हैं ये लंदन के सुपरस्टार हैं माशाल्लाह और पूरे यूके में छाए हुए हैं और आजकल इतनी महफिल हो रही है इतनी खूबसूरत महफिल हो रही हैं और इनको चाहिए होता है बहाना कोई ना कोई बहाना मिल जाए हम महफिल करेंगे और गाना गुनगुनाएंगे ये इनकी स्टोरी है और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू हुजूर कैसे तबीयत
15: आपकी वालेकुम सलाम जियो जियो जियो हजारों साल
0: माशाल्लाह और ठीक ठाक
15: है आपके एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहता था
0: जी जी
15: मेरा जो जो इवेंट्स हो रहे हैं ना जो
0: जी जी
15: शेयर किया आपके साथ
0: जी जी
15: अपने अपने जो लिसनर्स हैं उनके साथ शेयर करें।
0: जी जी कोई कोई मसला नहीं, मैं कह दूंगा कोई
15: मसला।
0: थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने ये भी खूबसूरत है, और आपकी जो महफिल है और आपकी जो दोस्त बाब हैं अजीज हैं, आई सल्यूट ऑल ऑफ देम बिकॉज यू नो क्वाइट फ्यू आर वेरी पॉपुलर पीपल एंड दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग बिकॉज यू आर ब्यूटीफुल एंड दैट्स व्हाई यू आर गैदरिंग योर पीपल योर फ्रेंड योर कॉलीग्स दे आर अमेजिंग।
15: बेसिकली आपने बिल्कुल सही कहा है, ये ब्लेसिंग है अल्लाह अल्लाह सुब्हान तआला की कि हमारे इतने अच्छे दोस्त मिले हमको दुनिया में, जिस लाइक फैमिली
0: जी
15: इतनी एनकरेजमेंट देते हैं मुझे, यू नो इट गिव्स मी सच अ कॉन्फिडेंस
0: क्या कहने। और आपको पता है कि हमारा जो सुनना रेडियो है वेस्ट लंदन में आ रहा है माशाल्लाह वेनसडे की दिन को DAB पे, तो वहाँ पे आप सुनेंगे DAB पे भी डिजिटल ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग पे वहाँ पे सुनेंगे लंदन में वेस्ट लंदन में, तो आपको हम दावत देंगे वहाँ पे सुने इंजॉय करें और हमारी म्यूज़िक को हम आपके आ रहे हैं वहाँ पे भी आ रहे हैं, और वैसे भी हम मिल्टन कीन में ऑलरेडी हैं तो वेस्ट लंदन में भी आ रहे हैं, क्या कहने ये आपके लिए हमने किया है। माशाल्लाह क्या कहने जी,
15: उनके लिए मैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल गाना
0: जी जी सॉरी एक सेकंड में यहाँ जी जी
15: है बने चाहे दुश्मन
0: जी जी जी
15: आपने पता है कल सुना होगा कि नहीं,
0: नहीं नहीं मैंने सुना था, मैंने सुना था बहुत ही खूबसूरत, वेरी नाइस ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल।
15: आपके ऑडियंस के लिए मैं ये स्पेशली चूज किया है
0: जी जी जी गो अहेड।
15: दुनिया में दुश्मन वो बनते हैं
0: ये
15: उसको संभालना बहुत बड़ी बात है,
0: बड़ी बात है, क्या कहने क्या कहने जी जी जी
15: प्लीज
0: जी
15: साथिया
0: वाह
15: ना कहीं
0: वाह
15: है तुझे
0: वाह वाह वाह
15: नींद में
0: वाह
15: जाएगा तू
0: हाय हाय
15: जिंदगी
0: हाय हाय हाय हाय हाय क्या कहने
15: आएगा तू
0: वाह
15: दो घड़ी हम किए
0: हाय हाय हाय
15: अकेले नहीं हम
0: वाह वाह
15: तो क्या है आएंगे
0: वाह
15: बोल कर हम आएंगे
0: वाह
15: है मगर हम नहीं
0: आए हाय हाय हाय वाह
15: होने वाले कभी हम नहीं
0: वाह
15: हमें जिंदगी लूट नहीं।

0: आप शुरू हो रहे
1: क्या कहने क्या कहने, कोई बात नहीं, हो जाता है हो जाता है हो जाता है।
0: बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, बने चाहे दुश्मन जमाना।

0: क्या कहने
1: क्या गाना
0: मेरे तो गाने में खो गया मेरे भाई, कमाल का ब्यूटीफुल। और क्या गाना है, क्या गाना नहीं, बहुत ब्यूटीफुल। और हमारे हमेशा ही आपको याद करते हैं, हमारे गिदन भाई हैं और हमारे पापी जन सुमित्रा जी हैं, हमेशा ही आपको।

0: बचपन बड़ा आशिकाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा।
1: वाह वाह वाह वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एज ऑलवेज। और मैं कैसे तारीफ करूं मेरे भाई की, इतनी खूबसूरत आपकी आवाज है, गाने भी गुनगुनाते हैं, ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, ऑलवेज इट्स ऑलवेज नाइस टू हैव योर कंपनी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। यू नो व्हाट, इट्स बीन सच अ ब्यूटीफुल इवनिंग एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। बहुत अच्छा लग रहा है, और ऐसे ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, और ऐसे ही खिलते रहे जैसे फूल खिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू very much, and thank you very much for your valuable time as well. Bahut bahut shukriya, thank you very much. Inshallah, inshallah, bahut acha laga, bahut bahut shukriya, thank you. Wow, that was hamare Sayyid Ehsan jo hamare London se phone karte hain aur zaf zai karte hain, duaen karte hain hamare liye, aur ye hamare superstar hain, and no doubt what a amazing always, and you know what, he's such a beautiful, what a beautiful energy he's got, beautiful. Bahut bahut shukriya, inka bahut bahut shukriya, aur yahan bhi hamara saath de rahe hain hamare mohtaram, hamare bhai, hamare dost, jitni bhi unki main tareef karun kam hai, aur bahut acha lagta hai jab ye phone karte hain aur zaf zai karte hain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kahunga yahan pe, kyunki yahan हमारे अपने हैं, हमारे सज्जन हैं, और हमारे मोहसिन हैं, हमारे मुश्ताक हैं, और क्या क्या मैं इनके बारे में मैं कहूँ, क्या क्या कहूँ, और पूरी किताब इनके लिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، چشمه روشن دل ماشا با کمال لاجواب بہت اعلی با عزت با وقار با ذوق با شوق ہر دل جی شخصیت بہت نفیس بہت لطیف میرے چیمپئن بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضور،
2: मोहतरम कैसे हैं आप؟
1: अल्लाह पाक का शुक्र करम, आप भाइयों की दुआ है और एनर्जी यहाँ पे मिल रही है, वो भी फ्री में।
2: माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। लोगों को तो वो कहते हैं ना कि पैसों से भी नहीं मिलती, आपको फ्री से
1: मिलती है। ये आप दोस्त आ रहे हैं, इतनी खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं, इतनी खूबसूरत लवाज है, और मैं हमेशा ही बात करेंगे, हर फूल की अपनी खुशबू है, और जो भी अपने ये मेरे अपने हैं जा रहे हैं, और आप ये मेरे अपने हैं, और आपको आपके साथ गुफ्तगू करके आए हाय हाय सदके जावा कुर्बान जावा।
2: माशाल्लाह अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मैं बगैर टूल नहीं चाहता कि मैं ज्यादा आपका
1: कोई बात नहीं, आपके जो ना कोई बात नहीं, आप अपना मौकफ मुकम्मल करें, और जो भी आपने गुफ्तगू करनी है वो करें मुकम्मल मेरे भाई, क्योंकि हम इंतजार करते हैं आपके चाहने वाले, वो इंतजार करते हैं कि कब आएंगे आप।
2: अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, और सभी चाहने वालों को अल्लाह ताला हमेशा अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे,
1: आमीन।
2: क्योंकि यकीन करें कि मेरा वो कहते एक अदना सा बंदा, मैं सभी को सुन,
1: मैं कहता हूँ काश सारी दुनिया में आप जैसे हो जाते ना, मसला ही हल हो जाए, मसला ही हल हो जाए, मैं दुआ करता हूँ आप जैसे सब हो जाए, आप जैसे।
2: अल्लाह ताला जो प्यार मोहब्बत जो हमारी माएं बहनें जो हमारे बुजुर्ग भाई क्या प्यार करते हैं, अल्लाह ताला उन्होंने वेड़े बसते रहे,
1: वेड़े बसते रहे, आए हाय हाय सदके जाओ,
2: अल्लाह इन सब की नस्लें आबाद हो क्यामत तक,
1: आमीन आमीन आमीन आमीन।
2: इनको जिंदगी में कभी कोई दुख कभी कोई तकलीफ ना आए।
1: वाह जी वाह।
2: तो सब पहले तो मैं आज के दिन की मुनासिबत से, क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन,
1: माशाल्लाह
2: उस सरकार की आमद है जिसके सदके में अल्लाह ताला ने पूरी कायनात बनाई है,
1: माशाल्लाह सुभान अल्लाह।
2: कुरान जीद ने फरमाया क्या है, मेरे हबीब मैं अगर आपको
1: जी
2: अगर आपको मैं नाजल ना करता, आपका नूर अपने नूर से जुदा करके ना खलक करता, तो मैं कायनात की कोई चीज ना खलक करता।
1: सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
2: ये कारोबार, ये शजर, ये कमर, ये समर, ये रातें, ये दिन, ये सब कुछ, जो समंदर, जो हवाएं, जो फजाएं, सब कुछ है मैंने, मेरे हबीब मेरे प्यारे, मैं तो ये आपके सामने बनाई
1: जी माशाल्लाह।
2: तो आज उस सरकार की आमद है जी, और मैं आलमे इस्लाम, क्योंकि वो रहमत
1: आलमीन है, माशाल्लाह माशाल्लाह,
2: सिर्फ मुसलमानों के नहीं है, वो आलमीन
1: आलमीन के लिए, पूरी दुनिया के लिए, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह
2: दुनिया
1: जी।
2: तो मैं अक्का दिल की गहराइयों से जहां जहां तक आपके रेडियो की आवाज जा रही है, पहले तो आपकी पूरी सनराइज की पूरी टीम को माशाल्लाह,
1: और आपको भी माशाल्लाह जी,
2: सुन रहे हैं
1: जी,
2: सभी को अक्का दिल की गहराइयों से सरकार दो आलम
1: सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माशाल्लाह
2: आमद पे आता दिल की ग्राहियों से मुबारकबाद देता हूँ
1: जी खैर मुबारक
2: सलाम पेश करता हूँ
1: जी जी बिस्मिल्लाह करें बिस्मिल्लाह
2: मशकील साहब है अहमद खान साहब आए थे जो साहब महबूब लाई भाई हैं
1: जी
2: साहब हैं वाजिद भाई हैं जंगीर भाई हैं काशिफ भाई कामरान भाई चौधरी मुजफ्फर साहब है आपी गजाला जबीर साहब हैं अतीका आपी आई थी माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत अंदाज में उन्होंने वो मेरी पसंदीदा नात जो उन्होंने पढ़ी थी ना नात के काश मैं दौरे पैगंबर में ठाया जाता बाखुदा कदमों में सरकार के पाया जाता
1: माशाल्लाह
2: बहुत ही प्यारी नात है यकीन करें मेरी फेवरेट नात है माशाल्लाह उन्होंने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पढ़ी है अल्लाह ताला उनकी जुबान में उनकी आवाज में और ज्यादा तासीर अता फरमाए
1: जी
2: तो आपके भाई है कामरान भाई है अतीका आपी है इबा आपी है आपकी शनाज मंसूर साहब है हमारा जी है आपी नईद है मोहतरमा हुसैन जी है कंवल जी है और नदीम मंसूर साहब है और जो हमारे टैक्सी ड्राइवर है जो डिलीवरी ड्राइवर है जो फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं जो हमारी माँ हमारी बहने हमारे बुजुर्ग इस वक्त किचन में काम भी कर सभी को मेरी तरफ से अखादियों से मोहब्बतों बड़ा चाहतों बड़ा उल्फत बड़ा शिदत बड़ा नहायत अदब अहतराम से बहुत बहुत सलाम
1: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू
2: तो ये मैं चंद शेर लेके आया हूँ सरकार की बारगाह में
1: जी जी जी जी बिस्मिल्लाह
2: तो पता न मेरी कोई मजाल तो नहीं कि मैं उस सरकार की शान में कुछ अर्ज अल्लाह ताला ने जिनकी शान में पूरा कुरानी कसीदा लिख दिया
1: माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह
2: आदमी क्या कुछ उनकी शान में बयान करेंगे
1: हाय हाय हाय हाय हाय हाय
2: निजात यही है
1: यही माशाल्लाह आज के रसूल कह सकते हैं माशाल्लाह जी माशाल्लाह बिस्मिल्लाह
2: कि मेरा जिक्र ही अल्लाह का जिक्र है
1: अल्लाह का जिक्र है माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह
2: पंजाब के सरकार में
1: जी जी जी जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह
2: क्या लिखता है फरिश्ता आके मुझे एक सलाम कर रहा था
1: हाँ हाँ सुभान अल्लाह
2: मैं ना कोई पे दो दिन से काम कर रहा था
1: वाह
2: मजाल है कि सरे अर्श दूसरा हो कोई मगर वहाँ पे जो तुझसे कलाम कर रहा था
1: आहा, क्या कहने
2: चला रहा है तू पर्दों में कारे शम्स कमर
1: वाह
2: मदीने वाला यही सरेआम कर रहा
1: था क्या कहने माशाल्लाह
2: हलीमा कहती है ये मौजदे तो कुछ भी नहीं
1: सुभान अल्लाह
2: चैंपियन भाई
1: जी जी जी
2: ये हासिल नाप शेर है
1: हाँ वाकई इसमें कोई शक नहीं बेशक
2: हलीमा कहती है ये मौजदे तो कुछ भी नहीं
1: कुछ भी नहीं हाय हाय हाय हाय हाय हाय
2: कि जिस तरह से वो सीएफ शाम कर रहा था
1: हाय हाय हाय वाह वाह वाह वाह
2: अली को मौला कहा हुम पे फिर ये फरमाया
1: आहा
2: अली को मौला कहा हुम पे फिर ये फरमाया कि मैं तो दीन की नेमत तमाम कर रहा था
1: हाय हाय हाय हाय हाय हाय क्या कहने क्या कहने क्या कहने क्या कहने वाह वाह वाह वाह
2: किसी का जोर नहीं के रोक ले शब को
1: आहा
2: चैंपियन भाई
1: जी जी जी
2: किसी का जोर नहीं के रोक ले शब
1: को आहा
2: मगर मदीने में हबशी गुलाम कर रहा
1: हाय हाय हाय हाय हाय हाय हाय वाह वाह वाह वाह क्या कहने क्या कहने
2: बहुत शुक्रिया
1: क्या कहने
2: आमीन आमीन है हर बात पे सरकार जो कह दे क्योंकि सरकार जो फरमा दे
1: वो क्या कहने हाय हाय हाय क्या कहने
2: सरकार ने फरमाया कि क्यामत है हमने देखी नहीं हम मान ले सरकार ने फरमाया हशर है हमने देखा नहीं मान लिया तो सरकार ने फरमाया कि जन्नत है हमने देखी नहीं लेकिन हमने मान ली क्योंकि सरकार सादिकुल अंबिया हैं
1: हाय हाय हाय हाय हाय हाय सुभान अल्लाह
2: शेर सुनिएगा
1: जी जी जी
2: अमीन है हर बात पे सरकार जो कह दे
1: वाह
2: कैसे खुदा को उनके बिना जान लेता मैं
1: वाह क्या कहने
2: फरमा दिया कि एक है और ला शरीक है
1: ला शरीक वाह बेशक बेशक
2: जैसे अगर दो हैं तो दो मान लेता मैं
1: आए हाय हाय हाय हाय हाय वाह वाह वाह वाह वाह क्या कहने
2: बहुत शुक्रिया परवेज भाई टाइम देने का
1: बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई आपने हमें टाइम दिया बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी वैल्यूएबल टाइम दिया बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह ताला की इज्जत है आपको बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे लिए दुआएं करें और सबके लिए दुआएं करें माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया और याली मदद बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया सर बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़ ये थे हमारे मोहतरम हमारे बहुत खूबसूरत भाई मीठा जी और हमारे चौधरी जुखार भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका Sunrise and music.
3: Rishi's Vision presents Anand Murthy Guruma in London. Learn timeless yogic wisdom directly from the revered master. Join a three-day series of enlightening talks on Yoga Sutras for realizing the true self. 11th to 13th September 2026. Life-changing sessions featuring profound talks, practical insights and powerful meditations at Hariben Bachubhai Nagrecha Hall, 202 Leighton Road, London, E151DY. On Friday 11th and Saturday 12th September, 6 p.m. to 8 p.m. and Sunday 13th September, 3 p.m. to 5 p.m. Free event, all are welcome. For more details, call AK Basra 07977201226. Mirdosh Kumar 07899055525. Gurkirit 07886545970. Usha 07931788062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.
1: Welcome back, listening. You're listening to Radio 103.2 FM. And बहुत शुक्रिया हमारे मोहतरम भाई हैं, दोस्त हैं, जितनी इनकी तारीफ करें, हमारे मुर्शिद हैं, वेलकम कहेंगे, जी कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे. शकील साहब हमारे साथ हैं यहाँ पे. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.
4: जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.
1: हजूर कैसे थे वीजा? ठीक है, ठीक है आपकी?
4: जी अल्लाह की मेहरबानी, शुक्र है. आपकी दुआएं हैं, आप सुनाए कैसे?
1: अल्लाह पाक का शुक्र, शुक्र करम है, करम आपके भाई की दुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह.
4: तो सब सुनने वालों को मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.
4: मैं ज्यादा टाइम अपना टीका साहब आए थे
1: जी,
4: चौधरी उखसार साहब
1: जी,
4: चौधरी फरियाद साहब को मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम, मलिक साहब को भी
1: जी.
4: वो ज्यादा टाइम नहीं है इसलिए मैं
1: जी
4: थोड़ा सा
1: जी.
4: तो आज आप सल्लम
1: जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
4: तो थोड़ा सा मैं
1: जी जी जी जी जी बिस्मिल्लाह करें, बिस्मिल्लाह करें जी.
4: माजी के दरीचों से ये नजम जी है कोई थोड़ी सी
1: जी जी जी बिस्मिल्लाह जी जी.
4: फिर आपके आने से पहले क्या था
1: जी,
4: आप सल्लम के आने से पहले,
1: आने से पहले जी,
4: वो कितना संगीन दौर था जब हर एक लम्हा हर एक पल यूं गुजर रहा था कि जैसे शोले बरस रहे हों. फजाएं मफलूज हो चुकी थीं, रही थी कोई नगमा इधर भी गूंजे, हर एक जर्रा तपश में जल के सोचता था कि अब्रे रहमत का कोई छींटा इधर भी आए. जहाँ में जितनी भी जुल्मतें थीं, वो जिस्म जहाँ पर तनी हुई थीं, हर एक वहशत लहू में घुलती सी जा रही थी, उदास आँखों के उजड़े आंगन में ख्वाब बुझते ही जा रहे थे.
1: आहा, क्या कहने,
4: हर एक इंसान भटक रहा था, जमीन ने जितने जतन किए पर न कोई गुल ऐसा खिल सका था कि जिसकी खुशबू से बज़्मे हस्ती महक उठे. फिर खुदा को भूला हुआ इंसान दिखाई देती थी हर तरफ पत्थरों की दुनिया,
1: पत्थरों की दुनिया,
4: खुदा पत्थर, शोर पत्थर, खुदा पत्थर, इसी तसलसल से जिंदगी पत्थरों से टकराती जा रही थी.
1: अल्लाह
4: के फिर यकायक सदाए रहमत की गूंज उठी और सारे पत्थर चटक रहे थे, वो एक असीम आताब निकला कि जिसकी किरणों की जद में आकर तमाम जुल्मात अपनी मौत आप मार रहे थे. खुनक खुनक चांदनी को पहने कर्म के बादल के हाथा में खुदा से बूंदे उतर रही थी, सुलग रहे थे जो मुद्दों से तमाम सहरा, वो आज ठंडक सी पा रहे थे. तमाशों के तमाम दर बंद हो रहे थे, शूर में ताबिशें सितारों की डर रही थी, दिलों की वीरान वादियों से मुसरतें यूं उभर रही थीं कि जैसे फवारे पत्थरों से उब पड़े हों. हर एक लब पे सवाल था कहां से इतने सुरूर आए, हर एक जर्रा पुकारता था
1: हुजूर
4: आए,
1: हुजूर आए, हुजूर आए, वाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. क्या कहने, क्या कहने,
4: पढ़ते रहो, पढ़ते होगे दुरूद साहब
1: सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
4: पढ़ते हुए दरूद साहेब अजीम को उठो, उठ कर पढ़ो सलाम सब सरकार आ गए. एक में आमद फराद की
1: जी जी बिस्मिल्लाह करें जी जी,
4: बरसी है
1: जी जी.
4: वो कहते हैं आपके रुत बदली तो खुशबू का सफर देखेगा कौन.
1: हाय हाय हाय वाह,
4: अब के रुत बदली तो खुशबू का सफर देखेगा कौन, जख्म फूलों की तरह महकेंगे पर देखेगा कौन
1: कौन। आय हाय हाय हाय क्या कहने,
4: देखना सब रख से बिस्मिल में मगन हो जाएंगे,
1: वाह
4: जिस तरफ से तीर आएगा उधर देखेगा कौन
1: कौन। आय हाय हाय वाह,
4: जख्म जितने भी थे सब मंसूब कातिल से हुए,
1: वाह
4: तेरे हाथों के निशान है चारा घर देखेगा कौन
1: कौन। वाह जी वाह,
4: वो हवस हो या वफा हो बात मारूमी की है,
1: वाह
4: लोग तो फल फूल देखेंगे शजर देखेगा कौन।
1: वाह,
4: मेरी आवाजों के साए मेरे बामों दर पे हैं,
1: वाह
4: मेरे लफ्जों में उतर कर मेरा घर देखेगा कौन
1: कौन। आय हाय हाय क्या कहने,
4: हम चिरागे शब ही जब ठहरे तो फिर क्या सोचना,
1: वाह
4: रात थी किसका मुकद्दर और सहर देखेगा कौन।
1: वाह जी वाह,
4: आप सीले शहर से देखे गनी में शहर को,
1: वाह
4: शहर जलता हो तो तुझको बाम पर देखेगा कौन।
1: वाह जी वाह,
4: हर कोई अपनी हवा में मस्त फिरता है फराज,
1: वाह
4: हर कोई अपनी हवा में मस्त फिरता है फराज, शहर नापुरसा में तेरी चश्मे तर देखेगा कौन।
1: हाय हाय हाय क्या कहने क्या कहने, बहुत खूब
4: बदली तो खुशबू का सफर देखेगा
1: कौन। हाय हाय हाय क्या कहने, और बहुत अच्छा लगा आप आए और आपने हमें टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर मलिक साहब उन्होंने टोकरी भेजी है फूलों की और बड़ा ही उन्होंने इन्जॉय किया और पसंद किया, उन्होंने आपको दो हाथ जोड़ कर सलाम पेश किया है, तो मैं कह रहा हूँ वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया सर, और आपने महफिल लूट ली है और बहुत अच्छा लगता है जब आप जिक्र करते हैं, और पिछले हफ्ते आपको लाइन नहीं मिली है, मैं आपकी मदद चाह रहा हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, हमने आपको मिस किया पिछले हफ्ते में, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे मोहतरम शकील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी, और देखो यहाँ पे हमारे साथ कौन है और यहाँ पे उनको हम वेलकम कहेंगे, जी आई कहेंगे, सत बिस्मिल्लाह कहेंगे, और बड़ी खूबसूरत हस्ती है हमारे स्कॉटलैंड की माशाल्लाह, और यहाँ पे बड़े अदब अदाब से बड़े प्यार के साथ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु डॉक्टर साहब,
5: कैसे हैं?
1: अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आप भैया की दुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, और आप सुनाए आपकी कैसी तबीयत है, ठीक ठाक हो?
5: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आप सब दोस्तों की दुआएं और मोहब्बतें
1: माशाल्लाह
5: आप बांटते ही रहते हैं और हमें
1: जी
5: रहते
1: माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या कहने क्या कहने,
5: सब वो फूल जो है गुलदस्ता
1: फूलों के आपके लिए फूल ही फूल है, क्या कहने
5: नहीं वो तो आप माशाल्लाह आप फिर गुलदस्ता का एक पूरा आपने सजाया हुआ ना
1: गुलशन, जी जी जी गुलशन जी जी बाग जी जी,
5: तो बहुत से दोस्त सब आए और मैं तो नलायक आदमी हूँ, फर्दन फर्दन तो नाम नहीं ले सकता, लेकिन यही है कि चलें
1: जी
5: सबका ही एहतराम और सबको मोहब्बत प्यार सलामती की दुआओं के साथ के सब जीते रहें
1: जी,
5: खुश रहें अपने अपनी जिंदगियों में और अपने जिंदगी के साथ रवा दवा रहे,
1: माशाल्लाह क्या कहने क्या कहने क्या कहने। तो
5: आज क्योंकि आप अलामा साहब की जो अलामा इकबाल की जो उनकी मैंने बड़ी बड़ी नातें पढ़ी हैं, इस पर गालिब की भी हैं
1: जी जी,
5: और लेकिन अलामा साहब ने जो
1: अशार
5: लिखे ना वो मैं समझता हूँ कि वो अशार जो थे वो बिल्कुल रूहानी कैफियत,
1: क्या कहने क्या कहने,
5: वो कायदा उन पर नाजिल हुए
1: नाजिल हुआ, आय हाय हाय क्या कहने,
5: शायरी अदरवाइज भी शायरी कहते हैं कि वही का दूसरा एक नाम
1: जी जी
5: के आपके ऊपर उतरती है
1: जी
5: ना
1: जी, ऐसी ऐसी
5: कभी मिसरा नहीं होता कभी गजलें उतरती हैं,
1: वाह वाह वाह,
5: तो ये कैफियत होती है, तो इसलिए जो उनकी नातिया अशआर हैं अलामा इकबाल के
1: जी
5: वो मैं चंद पेश कर देता हूँ जो मेरे भी जिंदगी के पसंदीदा तरीन रहे हैं और मैं हमेशा ही उनके साथ ही रहा हूँ, ठीक है अकीदत के साथ जो भी उनकी सरकार की खिदमत वो हर हर हर तरह से अफजल और खूबसूरत है
1: जी जी,
5: तो अलामा साहब के कुछ शेर ये हैं कि लौह भी तू कलम भी तू वजूद अल किताब, गुंबदे आप गीना रंग तेरे मुहीत में हुबाब,
1: क्या कहने,
5: आलमे आबो खाक में तेरे हजूर का फिरोग,
1: ओए होए
5: जर्रा रेत को दिया तूने कलुए आफ्ताब
1: वाह माशाल्लाह
5: और शौकत सिंजरो तेरे सलीम तेरे जलाल की नमूद
1: वाह
5: शौकत सिंजरो सलीम तेरे जलाल की नमूद
1: वाह
5: करो जुनैदो बायजीद तेरा जमाले बेनकाब
1: हाय हाय हाय हाय हाय
5: और शौक तेरा अगर ना हो और ये शेर देखें कितना शौक तेरा अगर ना हो मेरी नमाज का इमाम
1: होई, होई,
5: मेरा कयाम भी हिजाब मेरा सजूद
1: भी हिजाब होई, होई।
5: और तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा गए
1: वाह
5: अकलो गयाबो जुस्तजू इश्को हजूरो इस्तराब
1: वाह जी वाह क्या
5: तो इससे खूबसूरत अशआर जो है वो मैंने नहीं पढ़े
1: हाय हाय हाय क्या कहने क्या कहने और बहुत खूबसूरत लगा
5: मेरे शायरी
1: जी
5: से मेरा शगफ है या मैं शायरी से शगफ रखता हूँ
1: जी जी जी जी ये आपका अपना ख्याल है और अच्छा लगा कि आपने अपने ख्याल कर रहे हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा लगा क्योंकि आप खुद ही माशाल्लाह लिखते हैं पढ़ते हैं और बड़ी आपके पास नॉलेज भी है और बड़ा ही अच्छा लगा कि आप के पास इतना इल्म है इतना नॉलेज है और बहुत ही आपने कुछ अभी कुछ लिखा हुआ है अपने कोई कलाम की अभी
5: मैं आज कुछ दो चार बातें करना चाह रहा था शायरी तो होती
1: जी जी जी जी जी
5: तो मैं सिर्फ आपके सुनने वालों को ये आज कहना चाह रहा था कि हम अपने जीवन साथी को दोस्त अहबाब को खानदान के अफराद को हर चीज को मोहब्बत को इन सब चीजों को ना एक ये समझ लेते हैं कि ये हमारा हक है
1: हमारा हक है जी
5: क्या ना यानी कि उसको जिसको इंग्लिश में कहते हैं टेक फॉर ग्रांटेड
1: जी जी
5: कि हम उसको टेक फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं
1: जी जी
5: लेकिन जिंदगी में ऐसा नहीं
1: है जिंदगी में ऐसा नहीं होता जी
5: इसके बरक्स होती है रिश्ते जो है वो फूलों की तरह होते हैं
1: जी जी
5: इनको हर वक्त तवज्जो की
1: जरूरत होती है जी ऐसी

0: जो है रिश्तों के लिए बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जब हम इन चीजों को, जैसे आपकी मोहब्बत को मैं टेक फॉर ग्रांटेड ले लूं कि रमेश भाई मेरे साथ इतना करते हैं तो ऐसी क्या बात है
1: जी,
0: ये तो होता रहेगा, लेकिन एक टाइम आएगा फिर वो खत्म हो जाएगा,
1: खत्म हो जाएगा जी,
0: और वो आपके लिए वो चीजें नहीं रहती
1: हैं, हाँ जी।
0: क्या? और इसी तरह
1: जी,
0: जो सबसे बड़ी नेमत, जब ये कहा है ना कि हेल्थ इज वेल्थ,
1: हेल्थ इज वेल्थ जी जी,
0: तो इसकी ये वाकई इसमें कोई शक नहीं है कि जब तक आप सेहतमंद ना हो
1: जी,
0: आपके पास दौलत हो
1: जी जी,
0: लेकिन आप सेहतमंद ना हो तो वो कोई फायदा नहीं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये वो चीजें हैं जो हमें टेक फॉर ग्रांटेड नहीं लेनी चाहिए। हमें हमेशा रिश्तों को आबियारी करनी चाहिए।
1: वाह क्या बात है,
0: उनको
1: क्या?
0: पानी देना चाहिए।
1: मैं कहने वाला था कि फूल जैसे फूल हैं, उनको पानी की जरूरत होती है, ज्यादा देंगे तो वो मर जाएंगे और थोड़ा देंगे तभी मर जाएंगे, तो वो साफ के साथ ऐसे ही
0: आपको उसको
1: बैलेंस करना पड़ता है जी,
0: उसको आपको लेके चलना है
1: जी,
0: और यही जिंदगी की खूबसूरती
1: है। हाय हाय हाय, क्या क्या बात
0: है। तो आप उसके साथ साथ मुस्कुराते हुए, और दूसरी बात ये है जो मेरे, मैंने खैर मैं तो उसका डायरेक्ट, मैं उसका विक्टिम रहा हूँ
1: जी,
0: हादसों के बाद जो उठना है वो इंसान के लिए बहुत जरूरी है। आप जब, क्योंकि देखें हादसे जिंदगी में हर लम्हा हो रहे हैं,
1: ठीक
0: है, लेकिन आप उनके साथ ठहर नहीं सकते। इंसान को रवा दवा रहना है, और उसे रवा दवा रहने का नाम ही इंसान की जिंदगी है।
1: आए, आए, आए, क्या बात।
0: अगर आप रवा दवा नहीं रहेंगे, इंग्लिश में वो जो वर्ड है
1: स्टैग्नेंट
0: जो होता है वो पानी होता है जो रुका हुआ होता है।
1: क्या
0: जो पानी रुका हुआ होता है वो बदबूदार हो जाता है।
1: इसीलिए
0: कहते हैं कि चलता हुआ पानी पाक होता है।
1: पाक होता है।
0: वो चल रहा हो।
1: वाह जी वाह वाह।
0: उसके अंदर से वो जो जर्म्स हैं वो पत्थरों से टकरा के।
1: हाय हाय हाय हाय हाय हाय हाय। वाह वाह वाह वाह। वेरी डीप।
0: जो जो जो रुक जाता है वो जौहड़ बन जाता है, और जौहड़ से बदबू आती है
1: वो गंदगी होती है जी,
0: वो गंदगी होती है। इसीलिए आपको स्टैग्नेंट वाटर नहीं बनना,
1: ऐसे
0: रुका हुआ पानी नहीं बनना, आपको एक चलती हुई आबशार बनना है।
1: हाय हाय क्या बात है।
0: जो जिस धरती से गुजरे उसको सैराब कर दीजिए।
1: हाय हाय हाय हाय वाह।
0: और वहाँ मोहब्बत के फूल खिलते
1: चले। हाय हाय हाय क्या बात है।
0: वहाँ प्यार ही प्यार।
1: हाय हाय हाय वाह वाह वाह वाह। व्हाट अ ब्यूटीफुल वे। और क्या बात है,
0: मैं इसी तरह डिफाइन करता हूँ, तो वो सम टाइम मैं उन चीजों को विजुलाइज करता हूँ।
1: बिलीव करने के लंबी बात हो जाएगी कि मैं यही आज जो ना, मैं वो फूलों के बारे में बात कर रहा था, वो पढ़ रहा था, जैसे वो एक प्लांट है उसको ज्यादा पानी देंगे तो वो मर जाएगा, और थोड़ा देंगे तो वो तभी मर जाएगा, उसको बड़ा एहतियात करनी पड़ती है। तो वो मैंने इतनी एहतियात की है, वो आपको पता है वो कौन सा प्लांट है, तो वो सबसे बड़ा मुश्किल प्लांट है उसको लुक आफ्टर करने की, देखनेपाल करने की बहुत मुश्किल है। तो मैं कभी उसके साथ बातें भी करता हूँ कई दफ़ा, और कई दफ़ा ऐसा होता है कि मैं उसके साथ देखता हूँ कि मैं क्या करना चाहिए, कि ज़्यादा करूँगा तो वो मर जाएगा, थोड़ा करूँगा तो फिर भी मर जाएगा, तो बड़ा ही उसको एहतियात करनी पड़ती है। तो ऐसी ज़िंदगी ऐसी ही है, ऐसी
0: मैंने प्रैक्टिकली यानी कि अपने साथ मेरी जिंदगी में ये चीज रही है
1: जी,
0: कि मैंने दरख्तों से बातें की।
1: हाय हाय हाय हाय हाय हाय वाह वाह वाह वाह।
0: मुझे वो जवाब आया है,
1: जवाब आया। वाह वाह वाह वाह।
0: हालचाल बताते हैं, मैं अपने डेरे पे पाकिस्तान में मैं गुलाब के फूल लगाया करता था। आप बिलीव करें कि कई दफा ऐसा हुआ कि जिस तरफ मैं बैठा होता था वो गुलाब उस तरफ मुंह कर लेते
1: थे। वाह वाह वाह वाह क्या कहने।
0: और फिर हम, मैंने उनसे हाल चाल पूछना, मैंने उनके नाम।
1: हाय हाय हाय क्या कहने क्या कहने। वाह
0: के गुड्डू गुड्डू तेरा क्या
1: क्या हाल है। वाह वाह
0: फिर मैंने उनके वो पत्तों को देखना, उन पत्तों ने मुझे बताना कि भाई इसमें खाद की कमी आ रही है, जैसे विटामिन की कमी आ गई है, ठीक है ना, जैसे हमें डॉक्टर कहते हैं यार विटामिन सी ले लें।
1: ऐसे ही
0: ठीक है।
1: ऐसे
0: तो मैंने ये एक्सपीरियंस किया हुआ है कि उनमें जान है, वो आपसे रिस्पांस करते हैं।
1: हाँ ये हकीकत बात है, ये हकीकत बात है। प्लांट जो ना वो बात करते हैं जी।
0: यस आप अटैच होते हैं,
1: आपकी
0: सारी तकलीफ दर्द बताता है।
1: ये जो बातें होती है ना, हर बंदा नहीं समझ सकता है इसको, और ये जो दरवेश लोग जो है ना, वो जैसे आप जैसे
0: ना,
1: वो
0: जी रूह का सेंसिटिव होना जरूरी।

0: हाँ यही बात है, यही बात
1: क्यों कहते थे बड़े बुजुर्ग कि आप अल्लाह से हसास दिल मांगे,
0: दिल मांगे। वाह वाह,
1: हसास दिल वो होता है जो दूसरों का एहसास
0: एहसास करे। वाह क्या कह रहे,
1: जब आप हसास दिल के साथ देखे ना, आप जाते, मैं अक्सर यहाँ जा रहा होता हूँ तो मुझे कभी कभी लोग भी बेवकूफ कहते हैं, मैं किसी दरख्त को जफ्फी डाल लेता हूँ, ऐसे ही जाते जाते उसको जफ्फी डाल लूंगा, मुझे नहीं परवाह होती कोई देख रहा है क्या कर रहा
0: है, वो अपना एक अपना क्या
1: वो सोचता रहे, जिसने जो सोचना, मैं उसको जफ्फी डाल लेता हूँ, मुझे वो एनर्जी देता है, मैं उसको एनर्जी दे के।
0: इट्स वेरी वेरी गुड एनर्जी बाय द वे। और आपको देखा होगा जो सब्जें पार्कों में देखा होगा, एवरीथिंग ग्रीन, एवरीथिंग ग्रीन,
1: एनर्जी। आपको पता है इधर एडिनबरा में तो बहुत ग्रीन
0: ट्री, वेरी वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस।
1: वो जंगलों में ही वॉक करता हूँ, तो जंगलों में ही मैं अपना, मैंने सारे वहाँ पे जिस पगडंडी पे मैं
0: गया, हाय हाय हाय,
1: सारे पौधे मेरे,
0: यू नो व्हाट, आई सैल्यूट यू मेरे भाई, मैं आपको सैल्यूट करता हूँ, माशाल्लाह, क्या कहने, क्या कहने,
1: वाह। मैं डेली उनसे जाके चेक करता हूँ, डेली उनसे बात करके आता हूँ, साथ अपनी वॉक,
0: वाह क्या कहने,
1: वाह ठीक है। तो मुझे मुझे समझ आती है कि वो मुझे
0: रिस्पॉन्ड करे, ऐसे ही होता है, होता है, होता है, ऐसे क्यों नहीं होता है?
1: तो ये ऐसी कोई अनहोनी बात नहीं है, सिर्फ उसके लिए।
0: आई बिलीव इन दैट बिकॉज आई डू फ्रॉम टाइम एज वेल, बिकॉज आई नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट एंड यू नो यू टॉकिंग अबाउट एज वेल, सो दिस इज समथिंग नो एवरीबॉडी कैन अंडरस्टैंड दैट, बट दिस इज वी डोंट नीड टू प्रूव टू एनीबॉडी, तो कोई बात नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप आए, बड़ा ही मेहरबानी सर, आपने इतनी खूबसूरत बातें की हैं और विजडम टॉक आपने की है, बड़ा अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, जाकल्ला खैर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया, ये थे हमारे डॉक्टर राय अज़हर हुसैन साहब, और बहुत अच्छा लगा, इन्होंने हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी, और हमारा साथ दे रहे हैं, यहाँ पे टाइम बहुत कम है, और हमारे साथ एक नए कॉलर हैं, उनको भी वेलकम कहेंगे, जी कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे, और जल्दी जल्दी यहाँ पे
2: सनराइज रेडियो, your soundtrack, your time check.
0: Time in the studio is a 10 to 10, और यहाँ पे छोटी सी ब्रेक करेंगे जल्दी जल्दी क्योंकि काफी कॉलर्स हैं।
3: कुल्लो नफसेन जायकतुल मौत।
4: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक, गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं, टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
5: Did you know radio advertising generates an average revenue return of £7.70 for every pound spent? It builds awareness, drives online searches, and keeps your business in customers' minds through regular, trusted exposure. Put the power of radio behind your business with Sunrise Radio, broadcasting across Yorkshire, Manchester, East Lancashire, and Milton Keynes, with even more areas coming soon. And as we prepare to expand our coverage further, ask about our limited special advertising offer. Call 0127 473 5043.
0: Right, welcome back, listener. You're listening to Radio. और यहाँ पे हमारा साथ है आमिर भाई हैं, all the way from Birmingham से हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आमिर भाई।
6: जी जी सर।
0: आप हवा के दोष में, वेलकम, जी अनु, खुश आमदीद, एंड यू ऑन, जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला हमारे लिए, जी।
6: कोई मसला सर।
0: जी।
6: ठीक है, स्टार्ट करें जी।
0: जी जी जी, स्टार्ट करें जी।
6: ठीक है।
0: जी। बहुत खूब, बहुत खूब, वाह क्या कहने,

0: नहीं तो ये रुत ये हवा क्या करूं क्या करूं, तू नहीं तो ये रुत ये हवा क्या करूं, दूर तुझे से मैं के पता क्या करूं क्या करूं।
1: वाह
0: सुना सुना जा अभी
1: वाह वाह वाह क्या कहने, वाह बहुत खूब।
0: आंधियां वो चली आशिया लुट गया

0: वाह
1: एक छोटी सी झलक मेरे दिखने लग ओ चांद मेरे दिखला जा बेगा बेगा
0: हाय हाय
1: गाने पुकारे आ गया
0: वाह क्या कहने बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई इसलिए हम आपके दीवाने मेरे भाई आपकी बहुत खूबसूरत आवाज़ है वो जो गाना भी आपने चुना है बहुत अच्छा लगा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई का इंशाल्लाह आइंदा भी मुलाकात होगी अब आपके दोस्त में बहुत बहुत शुक्रिया सर बहुत बहुत शुक्रिया और ये आपके लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफिज़ बहुत बहुत शुक्रिया That was Amar Bhai from all the way from Birmingham. बहुत शुक्रिया इनका इन्होंने टाइम निकाला और इतना खूबसूरत गीत गुनगुनाया बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और यहाँ पर हमने वेलकम करना है और जी आने खुश आमदीद अब्दुल कयूम साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु
2: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि वबरकातुहु मेरी हमेशा वो कहते हैं कि इकबाल तुम हमेशा देर से आते हो तो वो इकबाल ने जवाब दिया जी हाँ इकबाल हमेशा देर से
0: देर से आता है और अब्दुल कयूम का देर हमेशा ही देर से आते हैं
2: और ये सारी ही बात की कह दी है मैंने दो दिन पहले मेरे आंख का ऑपरेशन हुआ था
0: तो इसीलिए मैं परेशान हो गया मैंने कहा पता नहीं कहाँ चले गए
2: और रास्ट हो जाए मगर चलो
0: अल्लाह अल्लाह रहम करेगा हम दुआ गो हैं आपके लिए हम आपके लिए दुआ गो हैं हम दुआएं करते हैं आपके लिए और जो आंखें हैं ना वो खूबसूरत तोहफा है और उसके उनको देखभाल करें
2: बिल्कुल आंख के मुकाबले में कोई चीज
0: कोई चीज नहीं कोई चीज नहीं कोई चीज नहीं
2: तमाम सुनने वालों को जो है मुश्तरका सलाम अर्ज कर उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे
0: माशाल्लाह
2: आराम से होंगे ठीक ठाक
0: माशाल्लाह
2: तो एक कुछ सत्रे हैं पढ़ने की कोशिश करूंगा
0: जी जी
2: उम्र गुजरेगी इम्तिहान में क्या
0: वाह
2: उम्र गुजरेगी इम्तिहान में क्या
0: वाह
2: दाग ही देंगे मुझको दान में क्या
0: वाह
2: उम्र गुजरेगी इम्तिहान में क्या दाग ही देंगे मुझको दान में क्या और मेरी हर बात बेअसर ही रही
0: वाह
2: नक्श है कुछ मेरे बयान में क्या
0: वाह वाह वाह वाह
2: मेरी हर बात बेअसर ही रही नक्श है कुछ मेरे बयान में क्या और मुझको तो कोई टोकता है भी नहीं
0: वाह
2: मुझ तो कोई टोकता भी नहीं यही होता है मेरे खानदान में क्या
0: वाह क्या कहने
2: मुझको तो कोई टोकता भी नहीं यही होता है मेरे खानदान में क्या और मुझको दुनिया से मुख्तलिफ जाना
0: वाह
2: खुद को दुनिया से मुख्तलिफ जाना आ गया था मेरे गुमान में क्या
0: वाह
2: और शेर है वो मिले तो ये पूछना है मुझे वो मिले तो ये पूछना है मुझे
0: वाह
2: अब भी हूँ मैं तेरी अमान में क्या
0: क्या वाह वाह वाह वाह
2: शुक्रिया जनाब वो मिले तो ये पूछना है मुझे अब भी हूँ मैं क्या तेरी अमान में क्या और शेर है
0: जी जी।
2: ये नसीम बहार गर्द आलूद ये नसीम बहार गर्द आलूद खाक उर्दी है इस मकान में क्या,
0: क्या?
2: और आखिरी शेर है
0: जी जी।
2: ये मुझे आसिल कलाम है ये मुझे चैन क्यों नहीं आता पड़ता ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता एक ही शख्स था जहान में क्या
0: वाह क्या कहे
2: ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता एक ही शख्स था जहान में क्या शुक्रिया जना
0: बहुत बहुत शुक्रिया सर आप आए और आपने देखभाल करें और आंखों का ख्याल रखें और बड़ी एहतियात करें बहुत बहुत शुक्रिया सर
2: बहुत शुक्रिया
0: बहुत बहुत शुक्रिया इंशाल्लाह अंदर मुलाकात होगी बहुत बहुत शुक्रिया रब रखा बहुत बहुत शुक्रिया राइट ये थी मोहब्बत की दुकान और नफरत के बाजार में बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका थैंक यू वेरी मच और हमें अच्छा लगा और हम कोशिश करते हैं कि मोहब्बत ही बांटें और मोहब्बत बांट रहे हैं और हम हैं राय प्यार के फिर मिलेंगे चलते चलते ऑन डेफिनेटली इंशाल्लाह जल्द ऑन संडे इवनिंग बिटवीन आवर्स ऑफ 8 एंड 11 वेयर वी गोना बी हैविंग अ पार्टी इन द स्टूडियो एज ऑलवेज अल्लाह हाफिज ऑन शब खैर गॉड ब्लेस यू ऑल
3: Broadcasting to the Asian community 24 hours a day, this is Sunrise Radio. On the hour, every hour, this is Sunrise Radio Network News.
4: Sky News Centre at 11. The Prime Minister's promised to do everything he can to support British nationals impacted by flash floods in Nepal. At least 33 UK citizens are among those missing. Officials there say at least 157 people have died. David Fisher is from the Red Cross.
5: We are already providing food for many people who have been displaced, supporting the authorities with search and rescue, and arranging for some emergency shelter for people.
4: A child is among two people who've died in a house fire less than a mile from the scene of a crash on Teesside on Saturday that killed seven people. Police in Middlesbrough have made two arrests and aren't ruling out links to organised crime. Meta is to change some of its teen account settings as part of a settlement in the US. Facebook and Instagram's owner is to pay around £12 billion but still denies deliberately designing features to hook children. British actor Tim Curry has died aged 80. His character, Dr. Frankenfurter in the Rocky Horror Picture Show, is among his best known roles. Anna Bates reports.
6: It was the 1975 cult classic that launched him into the spotlight. Before later roles as Rooster in Annie, Pennywise the Clown in It.
7: Aren't you gonna say hello?
6: And the hotel concierge in Home Alone 2.
8: Run along, Cedric.
6: He suffered a major stroke in 2012, which he spoke about back in September.
9: A very nice paramedic said, I'm going to give you morphine, and I said, bring it on.
6: A cause of death has not been confirmed.
4: Police say they're investigating an alleged assault following an incident involving England cricketer Brydon Carse at a nightclub in Derby. He was pictured in handcuffs after being very briefly arrested on suspicion of being drunk and disorderly on Sunday. And Liverpool will host Tottenham in the third round of the EFL Cup as teams playing in Europe enter the competition. Spurs qualified by seeing off Charlton 5-1. That's the latest. I'm Daisy Steele.

0: भैया सवेरे सवेरे ऊंट नू लै जा करे ते शाम नू चार के घर लाया करे। एक दिन की होया, गर्मियां दी रुत्ते ठंडी ठंडी हवा चलदी सी ते दरख्त थले पए दी भैये दी अख लगी ते उधरों बघेल से उहदे ऊंट दी चन्नण से उहदी बोती नाल अख लड़ गई। चोरी चोरी मिठिया मिठिया प्यार दीआं गल्लां करदे ऊंट ते ऊंटणी किलो दो किलोमीटर गाहां निकल गए। जदों भैये दी अख खुली उहनूं तां पै गई भसूड़ी वी भाई मेरा तां ऊंट चोरी हो गया। डर गया वी मैनूं तां जट कुट कुट के मार दू, उह तां अपनी बिहार वाली गड्डी लग्गिआ फड़न। फिर वी चेता आ गया वी भाई मैं तां अपना एड्रैस दित्ता होइआ जट नूं, होर ना किते मगरे आ के मैनूं कुट्टे।
1: फिर भैये ने सुनेहा भेजता
0: कोई सवाह भेजना सी भैया बेचारा बिंद रखी वांगू, ना उहदा अता जाणदा ते ना उहदा पता जाणदा। ना तां भैये नूं इह पता कि ऊंट नूं पंजाबी च कहिंदे की आ ते ना ही उहनूं बघेल से उहदा नां चेते आवे वी जट दा नां की आ। अखीर नूं बेचारे नूं तुरदे फिरदे नूं जमीन तो ऊंट दा इक लेडा लभ गया, उहनूं अपने हत्थ दी तली ते चक्की फिरे ते सामणों इक होर भैया तुरिआ आवे, उहनूं कहिंदा भैया बात सुन, उनको कहना जिनके हैं हम खो गए हैं वो जिनका है ये।
1: वाह बिंद रखिया जी, मन गए थोड़े हौसले नूं, ना कुड़ी दा आता जानदे हो ना उहदा पता जानदे हो,
2: फिर भी अगले नूं अपनी अपनी लगदी है।